0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। हमें भगवत गीता एक बहुत सुंदर बात बताती है। वह हमें बताती है कि जिस प्रकार से एक गांव में बहुत सारे कुएं होते हैं, किसी कुएं में कपड़े धोते हैं, किसी में हम स्नान करते हैं, परंतु इन सारे कुओं का जो कार्य है एक नदी पूर्ण कर देती है। उसी प्रकार से अगर हम अपने जीवन में बहुत सारे लक्ष्यों को एक साथ लेकर चलेंगे तो हम भी इसी प्रकार से अलग अलग कुओं में जाना पड़ेगा, लेकिन अगर जीवन में एक लक्ष्य बनाकर उस पर पूरे फोकस से कार्य करें तो आप उसको बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए फोकस होना जीवन में बहुत आवश्यक है। हरे कृष्णा।

नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सब सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा और काशी है।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा। आज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि भगवद गीता एक बहुत सुंदर चीज हमें बताती है। यह हमें बताती है कि आप जीवन में कभी भी आपका रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, परंतु हमारे साथ एक छोटी सी परेशानी है कि हम रिजल्ट के लिए ही कार्य करते हैं और इसीलिए आगे जाके फ्रस्ट्रेशन मिलता है। जैसे कि किसान अपना खेत में बीज बो सकता है परंतु वो वर्षा नहीं ला सकता। इसीलिए हम अपने कर्म को बहुत ईमानदारी से कर सकते हैं परंतु जो रिजल्ट है वो भगवान फाइनली हमें देते हैं। इसीलिए मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूंगा, इसको हमेशा याद रखें कि डू योर बेस्ट एंड लेट कृष्णा डू द रेस्ट। हरे कृष्णा।
3: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
1: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा।
4: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। भगवत गीता हमें एक बहुत सुंदर बात बताती है कि हमारे जीवन में तनाव आता क्यों है और उससे बच कैसे सकते हैं। तनाव हमारे जीवन में इसलिए आता है क्योंकि हम अपनी प्रकृति के विरुद्ध कार्य करने का प्रयास में लगे रहते हैं। जैसे कि एक मछली से आप कहेंगे पेड़ पे चढ़ जाओ तो उसकी प्रकृति नहीं है। इसीलिए अगर आप प्रकृति के विरुद्ध कार्य करेंगे तो आपके जीवन में तनाव बढ़ेगा, डिप्रेशन एंग्जाइटी बढ़ता चला जाएगा। परंतु जैसे ही आप अपनी प्रकृति में यानी स्वयं को जानें और उसके अनुसार अगर अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करें तो आप तनाव से पूर्ण रूप से मुक्त होकर भी कार्य कर सकते हैं। कितना कार्य? जितना चाहे आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप खुश हैं तो आप हमेशा अपने कार्य को 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे नहीं जितना चाहे कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।

से शुक्र करूं तेरी रहमतों का ऐ खुदा, मुझे मांगने का सलीका नहीं है, पर तू देने की हर अदा जानता है। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर शारदा सवेरा।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
3: राम राम, दोस्त राम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की। मैं कोशिश करता हूं अपने खास प्रोग्राम के माध्यम से, इसका नाम है बिंदास सुबह, बिंदास बोल, बिंदास बातें। मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूं आपके साथ। कोई शख्स अगर आपके इस घर में आ रहा है, आंगन में आ रहा है, लेकिन उससे पहले उसकी कामयाबी के चर्चे चहुंओर हो जाते हैं, तो निश्चित तौर पर कोई चर्चा, कोई खास विषय जिस पर बहुत सारी बातें होने वाली है, तो बहुत अच्छा लगता है कि कोई हमारे साथ आज जुड़ रहा है। विषय ही कुछ ऐसा है, विषय है खोजी पत्रकारिता, यानी कि इसके विषय में जानने में, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और कौन शख्स हैं, कौन शख्सियत हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। 1.5 दशक से ज्यादा समय से आप पत्रकारिता में सक्रिय तौर पर काम कर रहे हैं और आपका जो अनुभव है, जी न्यूज के साथ आप जुड़े रहे, न्यूज एक्सप्रेस के साथ जुड़े रहे, न्यूज चैनल है, डीडी न्यूज है और तमाम सारे चैनल्स के साथ बहुत बड़ा अनुभव के साथ आप आते हैं, आप हैं। और वर्तमान समय की अगर मैं बात करूं तो न्यूज 18 में आप इस समय कार्यरत हैं। आनंद तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत सुनो शारदा 90.8 FM पर।
4: बहुत बहुत धन्यवाद, शारदा यूनिवर्सिटी ने मुझे यहाँ पर बुलाया स्टूडेंट के साथ 1-to-1 गेट टूगेदर करने के लिए। अच्छा लगेगा मुझे अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर स्टूडेंट के साथ शेयर करने के लिए पत्रकारिता का।
3: बेशक सर, जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, जानने की समझने की कोशिश कर रहा था, सीनियर जर्नलिस्ट आप हैं और आपका जो एरिया आता है वो है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, तो सबसे पहले मैं सबसे स्टूडेंट्स के ब्याह पे यही जानना समझना चाहता हूं कि खोजी पत्रकारिता का जब जिक्र आता है तो पुराने समय का हम जब जिक्र करें तो गुप्तचर हुआ करते थे, हनुमान जी का जिक्र आता है, तो वर्तमान समय में इस डेजिग्नेशन को कैसे हम परिभाषित करेंगे, किस तरीके से हमारे स्टूडेंट्स को आप समझाना चाहेंगे?
4: देखिए, मैं 2005 से क्राइम इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म कवर कर रहा हूं, तो जब मैं 2005 में इस फील्ड में नया नया आया था तो एक चैनल के साथ मैंने इंटर्नशिप शुरू करी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप क्राइम इन्वेस्टिगेशन फील्ड में आपको काम करने का किसी भी स्टूडेंट को मौका मिलता है तो पहले तो उसके अंदर झिझक नहीं होना चाहिए किसी भी तरह की।
3: क्या बात।
4: और उसके अंदर एक ऐसी डेयरिंग होना चाहिए कि वो किसी से भी फोन करने में, बात करने में, मिलने में हिचकिचाए नहीं, घबराए नहीं, डरे नहीं। क्योंकि आप अपने प्रोफेशन के लिए अगर किसी से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं या आप कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टाइमिंग या पर्सन ये सब डिपेंड नहीं करता है, आपको अपना काम डिपेंड करता है और उसके लिए आप किसी भी हद तक
3: जा सकते हैं, जा सकते हैं
4: और जाना भी चाहिए। अगर आपको एक अच्छा मेहनती जर्नलिस्ट बनना है और आज के सिनारियो में अगर आपको वो सर्वाइव करना है तो उसके लिए मुझे लगता है कि इसके लिए आपको जुनून होना बहुत जरूरी है, चाहे आप क्राइम इन्वेस्टिगेशन की फील्ड में हो या कोई
3: भी
4: फील्ड में, स्पोर्ट्स में हो, एंटरटेनमेंट में हो, आप किसी में हो, बिजनेस में हो, आपको उस फील्ड में आपको
3: जुनून चाहिए,
4: प्यार करना पड़ेगा आपको।
3: क्या बात है।
4: जब आप उससे प्यार करने लगेंगे तो जाहिर तौर पर अपना पूरा समर्पण उसके लिए देंगे।
3: क्या बात है। तो लिसनर्स, कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ हमारा यही है कि बात जो निकलकर सामने आई है कि जुनून, पागलपन, जब आप प्यार करेंगे तो निश्चित तौर पर वो क्षेत्र भी आपको प्यार करेगा, लोग भी आपको बेशुमार प्यार बरसाएंगे। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल योर सुर शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। और आज हमारे साथ एक खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, मिस्टर आनंद तिवारी जी। बहुत अच्छे बड़े अनुभव के साथ आप आते हैं और खोजी पत्रकारिता के यूं कहें कि महारथी हैं। मैं हिंदी में बात कर रहा हूं और ये बातें कहीं ना कहीं हमें टच करती हैं। खोजी पत्रकारिता का जब जिक्र होता है तो जिक्र होता है गुप्तचरों का, जिक्र होता है हनुमान जी का, क्योंकि वो खोजी पत्रकारिता की ही वजह से पता लगा पाए थे कि सीता मैया कहाँ हैं। तो कहीं ना कहीं जो सर ने जिक्र किया कि एक जुनून होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए, प्यार करेंगे जब आप अपने क्षेत्र से तो निश्चित तौर पर उसका जो रिवर्ट आता है तो वो काम आपको आगे लेकर जाता है। तो सर, मैं आपसे एक बार फिर से आपका सुरशादा 90.8 FM पर बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया।
0: जुनून पागलपन का आपने जिक्र किया, इस बात को मैं आगे लेकर यूं जाना चाहूंगा कि खोजी पत्रकारिता नो डाउट हिम्मत का काम है। उसमें कहीं ना कहीं एक डर घबराहट है, कोई जरा सा भी थ्रेट दे देता है तो मैं समझता हूँ कि इंसान डर सकता है, घबरा सकता है या अपने करियर को वहीं रोक देगा, स्टॉप कर देगा। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें परेशानियां आपके सामने भी आई होंगी, क्या कहना चाहेंगे आप सर?
1: देखिए, बिल्कुल, जब 2006 में मैं एक चैनल से जुड़ा था, S1 उसका नाम था, वो दिल्ली NCR का काफी बड़ा फेमस चैनल था। तो एक रिटायर्ड ACP मुझे मिले फील्ड में। उस समय एक व्हाट्सएप के फोन तो होते नहीं थे, या तो लैंडलाइन से बात करिए या जो नॉर्मल फोन होते थे उनसे बात करिए। तो ऐसा अब बहुत इजी हो गया, जर्नलिज्म पहले नहीं था उतना 2005-06 में। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी बेटी के साथ एक ने चीट किया है और वो वर्ल्ड बैंक में अपने आप को बताता था। और वो उस समय जो UP में जो सत्ता थी उसमें वो टॉप के 10-14 ब्यूरोक्रेट्स में उसका बेटा था।
0: अच्छा।
1: तो मैंने अपने एडिटर को वो स्टोरी बताई, हमने कहा कि बड़ी पढ़ी लिखी लड़की है और जो काफी ज्यादा डॉबरी वगैरह उन्होंने ले रखी थी। तो हमने वो लड़की का इंटरव्यू किया और इंटरव्यू करके वो स्टोरी ऑन एयर हुई और वो काफी चली, डिबेट शो टाइप में हुआ, मेरा लाइव हुआ। उसके बाद शाम को मेरे को फोन आना शुरू हो गए, बेसिकली पावर का मिसयूज जिसको कहते हैं, मतलब मेरे खिलाफ गाजियाबाद पुलिस से बहुत सारे फोन आए मेरे एडिटर को कि आपके रिपोर्टर को अरेस्ट करेंगे, फेक न्यूज चलाइए। तो हमारे पास तो डॉक्यूमेंट्स थे, हमारे पास तो विक्टिम था, हमारे पास सारी चीजें थी। और जैसा आपने बताया ना, वो डर उस समय मेरे अंदर नहीं था क्योंकि मैं तो उनके जहाँ पे वो लोग रहते थे हम वहाँ पे कैमरा लेके शूट करने चले गए, गार्ड्स के इंटरव्यू किए, अंदर नहीं घुसने दी, मतलब जो सारा टीवी का ड्रामा होता है वो हमने सारा करके दिखाया। उसमें
0: सबूत थे आपके पास?
1: सबूत थे, मतलब उसको आप टीवी की भाषा में आप ड्रामा हो सकते हैं, बेसिकली हमने एविडेंस कलेक्ट करे थे। उसके बाद वो केस बेस हुए, बहुत सारे थ्रेट कॉल आने लगे, मैं थोड़ा डर भी गया क्योंकि मैं जर्नलिज्म में नया इंटर्नशिप करके। मेरे एडिटर ने बोला कि तुम्हारी अगर न्यूज सही है तो डरने की जरूरत नहीं।
0: क्या बात है, क्या
1: उस
0: बात?
1: समय बस मैंने एक दिमाग ये लगाया कि मेरा चैनल उस समय दिल्ली NCR का चैनल था, मुझे पता था कि ये न्यूज नेशनल कैसे बनेगी। तो मैंने एक मेरे सीनियर थे वो दूसरे चैनल में थे, मतलब देश का नंबर वन चैनल था उसमें थे, मैंने उनसे वो स्टोरी डिस्कस की शाम को स्पेशली फिल्म सिटी आके
0: जी।
1: उनको वो बड़ी कैचिंग लगी।
0: हाँ।
1: तो मैंने सारा रिसोर्सेज अपना उनको दे दिया,
0: ट्रांसफर कर दे दिया,
1: कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह सारा।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: ओके। सारा कुछ और सारी डॉक्यूमेंट जो थे फोटोकॉपी करके उनको दे दी
0: जी।
1: उस दिन तो कुछ नहीं हुआ। हाँ। अगले दिन भी कुछ नहीं हुआ। आप यकीन, उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे जो प्राइम टाइम शो आता है 8 बजे का, उसमें वो स्टोरी खुली
0: दूसरे चैनल पे जी
1: ऑन एयर हुई।
0: हाँ।
1: और उसके बाद मतलब शायद ही कोई मीडिया होगा दिल्ली NCR का जिसने वो स्टोरी फॉलो नहीं की। उसके बाद वो लड़का जेल भी गया जो था ब्यूरोक्रेट्स का, और फिर वो फैमिली हमारे चैनल्स में आई, उन्होंने हमारा थैंक्स करा, उनकी बेटी ने थैंक्स करा, उनके फादर ने थैंक्स करा कि आपकी स्टोरी से हमें ये बेस मिला। वो एक्चुअली वो जो मैंने स्विच करी थी स्टोरी वो मेरा अपना खुद का दिमाग था।
0: क्या बात है,
1: क्योंकि उस समय मैं थोड़ा सा डरा हुआ था, नया नया था जर्नलिज्म में, और फिर मुझे लग रहा था ये न्यूज अगर नेशनल नहीं बनी तो फिर बहुत सारे प्रेशर्स हम पे आएंगे और हम फिर मतलब एक मोरल डाउन होता है आपका, वो डाउन नहीं। और वो स्टोरी इतनी पिक हुई कि मतलब वो उसको
0: मैं समझ गया ना सर,
1: उसकी गूंज थी।
0: मैं आपको रोक रहा हूँ लेकिन मेरा जो सवाल करने का मतलब मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि आपकी स्टोरी से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो क्षेत्र में आ रहे हैं काम कर रहे हैं क्या सीख मिलती है। निश्चित तौर पर आपकी बात से उनको जरूर सीख मिलेगी कि आपको डरना नहीं है, धमकी भरे फोन भी आ सकते हैं, आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला जा सकता है, आपको अपनी जॉब से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो मुझे लगता है कि उस दिन अगर आनंद तिवारी जी रुक गए होते तो यहां तक आनंद भरी यात्रा नहीं कर पाते। ये जो सफर रहा है वाकई बहुत सुहाना सफर रहा है, तभी आप कुछ अपने अनुभव को शेयर कर पा रहे हैं, स्टूडेंट्स को बता पा रहे हैं। और मुझे यही कहना है स्टूडेंट्स कि अगर आप इस क्षेत्र में आ रहे हैं तो निर्भीक होकर, यानी कि डरेगा बिल्कुल मत, अच्छी तरीके से पत्रकारिता करिए। और निश्चित तौर पर ये समय ये वक्त आपका है, कह सकते हैं कि वक्त हमारा है। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक और कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। और मेरे साथ जुड़े हुए हैं हमारे खास मेहमान आनंद तिवारी जी, जो कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं सिर्फ सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो में आज मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आप हैं मिस्टर आनंद तिवारी जी, सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम न्यूज 18 इंडिया से, जो कि खोजी पत्रकारिता का क्षेत्र सर का है, उस क्षेत्र में बहुत महारत हासिल है। उनके अनुभवों को हम जान रहे हैं। निश्चित तौर पर जो मीडिया के स्टूडेंट्स हैं इनसे जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे कि इस फील्ड में अगर आप आ रहे हैं तो क्या करें क्या ना करें, ये जान लेना समझ लेना बहुत जरूरी। तो सर एक बार फिर से सुरोशादा 90.8 एफएम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत खुश हूँ आज आपसे मिलकर, आपसे बात करके अच्छा लग रहा है।
1: नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तक हम लोग इंटरव्यू लेते थे एक तरीके से, दे रहे हैं ऐसा लग रहा है।
0: ये तो सर मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे चुना, अदरवाइज आपके पास समय कहाँ।
1: शारदा यूनिवर्सिटी का थैंक्स जो उन्होंने हमें इतना ऑनर दे के यहाँ बुलाया।
0: थैंक यू सर। सर मेरी बातों बातों में बात निकल कर ये सामने आई कि क्या करें क्या ना करें। कुछ एथिक्स होंगे, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होंगे, कुछ स्किल्स जो स्टूडेंट्स डेवलप कर सकता है, तो स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे कि जब इस फील्ड में आ रहे हैं, इस पत्रकारिता के क्षेत्र में आ रहे हैं, तो किन किन बातों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़े।
1: देखिए, बिल्कुल आपने बहुत जायज सवाल पूछा है। सबसे पहले तो आपको मीडिया एथिक्स पता होना चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है।
0: जी,
1: फेक न्यूज बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रही है आजकल, आपको उससे बचना है। आपको किसी लाभ लालच में नहीं आना है, आपको बिल्कुल खबर की डेप्थ तक जाना है, तब आपको उसको ऑन एयर करना है। ये नहीं कि आपको कोई ने खबर दे दी, उसका सर पैर नहीं पता, आपने उसको ऑन एयर कर दी। या किसी कोई कितने ही बड़ा रिनाउंड अफसर हो, कोई हो, जब तक आप उसकी डेप्थ नहीं पता करेंगे वो स्टोरी की, जब तक आपको उसको ऑन एयर नहीं करना चाहिए।
0: जी,
1: दूसरा बात होता है आपको सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी होना चाहिए। आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, भले चाहे वो क्राइम जर्नलिज्म हो या कोई और, आपको उसके बारे में जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा जो करंट न्यूज आ रही है उनको ज्यादा फॉलो करेंगे या उनका फॉलो अप रखेंगे, तो आप एक बेहतर जर्नलिस्ट बन सकते हैं। और जो अभी मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं, जिनका अभी लास्ट ईयर है या जिनका फर्स्ट सेमेस्टर है, जो अभी यहाँ से पास आउट होकर निकलेंगे या कहीं जॉब करेंगे, उनको बेसिकली अभी से एक अपना गोल और एम तैयार करना पड़ेगा कि उन्हें करना क्या बेसिकली।
0: जी,
1: और जब वो ये डिसाइड कर लेंगे कि मुझे इस फील्ड में ही काम करना है, मुझे क्राइम जर्नलिज्म ही करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, तो उसमें आपको पुराने बहुत सारे केसेस है जिनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। और मुझे, मैं तो कहता हूँ कि आपको आजकल इतनी सारी वेब सीरीज आ रही है जो रियल स्टोरी पे बनी हुई है, आपको उनको देखना चाहिए। उससे आपको बहुत सारा नॉलेज मिलता है जो रियल स्टोरी पे बनी, लोगों की डॉक्यूमेंट्री बनी, बायोग्राफीज बनी है, आप उनको देखिए, उससे आपको पता चलेगा कि वो बंदा क्या था, उसकी लाइफस्टाइल कैसी थी, वो कैसे क्राइम की दुनिया में आया। जैसे हम लोग अभी सडनली हमने बहुत सारी सीरीज करी न्यूज 18 ने, शायद न्यूज 18 पहला ऐसा चैनल होगा देश का जो देश के करीबन 8-9 गैंगस्टरों के घर गया। मैं खुद होके आया हूँ। जब हम गए तो हमें पता चला कि वो जो गैंगस्टर थे उनका एक पार्ट क्या है लाइफ का, दूसरा पार्ट
0: क्या है,
1: क्राइम की दुनिया से अलग वो क्या है। तो वो आप तभी कर सकते हैं जब आप ग्राउंड पे जाएंगे, आप फोन पे जर्नलिज्म नहीं कर सकते। आपको फील्ड पे जाना जरूरी है, लोगों से मिलना जरूरी है, जितने ज्यादा कॉन्टेक्ट बनाएंगे उतना ज्यादा जरूरी है। और आपको अपने फील्ड के बारे में मुझे लगता है जितना ज्यादा सीखेंगे उतने ज्यादा आप अच्छे जर्नलिस्ट बनेंगे आगे आगे।
0: बेहतरीन सर, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने हमारे लिसनर्स तक, हमारे श्रोताओं तक, हमारे दोस्तों तक, हमारे स्टूडेंट्स तक पहुंचा दी। मुझे लगता है कि इन बातों को अगर वो गांठ बांध लेंगे तो निश्चित तौर पर इस फील्ड में कहीं रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं। सर आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें शेयर की। कभी कभी शिकायत तो होती होगी जब आप देखते होंगे कुछ इंटर्न्स आपके यहाँ काम करने आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि हथेली पे सरसों तुरंत उग जाए। आपको कहीं ना कहीं उनके अंदर कमी भी दिखती होगी कि कहीं वो ललक है, लगन है या नहीं है। तो वो जब आप मिलते हो स्टूडेंट से, तो उस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे।
1: हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मतलब मैं इसमें स्टूडेंट की गलती नहीं मानूंगा। मतलब आज का स्टूडेंट जो है मास कम्युनिकेशन का, उसको बहुत सारी चीजें जो है वो फास्ट चाहिए।
0: जी,
1: हम लोग जब इंटर्नशिप करते थे तो हमने 6-6 महीने इंटर्नशिप किए फ्री ऑफ कॉस्ट। और हम अब तो मतलब आपके पास रिसोर्सेज बहुत सारे हैं।
0: जी,
1: पहले रिसोर्सेज उतने नहीं थे जिसमें आपको काम करना होता था। अब के इंटर्नशिप क्या होते हैं, उनको बहुत सडनली 1 महीने के इंटर्नशिप में अगले महीने उनको नौकरी चाहिए।
0: नौकरी।
1: और वो बहुत कम ही स्टूडेंट मैंने ऐसा देखा है जो बहुत दिल से सीखना चाहते हैं चीजों को। हमारे ऑफिस में भी बहुत सारे इंटर्न्स आते हैं, हमारे साथ उन्हें फील्ड में भी भेजा जाता है, तो उसमें 10 में से केवल 2 इंटर्न्स ऐसे होते हैं जहां हमें जहां लगता है कि जो सीखना चाहते हैं, जो हमसे कुछ पूछना चाहते हैं,
0: उन्हीं को नौकरी ऑफर करते
1: हैं। बाकी कुछ ऐसे होते हैं जो बस वे बोलते हैं कि सर हमारी शिफ्ट खत्म हो रही है, हमको घर जाना है, हमको मेट्रो स्टेशन पर ड्रॉप करा दीजिए। तो वो लगता है कि वो सिर्फ एक डिग्री लेने के लिए मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं। मतलब मैं और भी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ तो वहां पर मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा जो जिनको अपना बेसिक फील्ड के नॉलेज होना चाहिए जो नहीं होता है,
0: नहीं होता।
1: और बहुत सारे ऐसे होते हैं जिन्हें अपने फील्ड के नॉलेज से ज्यादा होता है, मतलब वो सीखना चाहते हैं
0: बहुत कुछ।
1: तो मैं स्टूडेंट को मतलब उनका मनोबल नहीं गिरा रहा हूँ, मतलब बेसिकली बोल रहा हूँ कि अगर आप जर्नलिज्म की फील्ड में आए हैं, आपको अगर जर्नलिज्म ही करना है या पीआर एजेंसी में जाना है या क्रिएटिविटी में जाना है
0: तो तैयार होकर आइए,
1: तैयार होकर आइए,
0: माइंड मेकअप करिए।
1: और अगर आपको कोई भी न्यूज चैनल या अखबार या छोटा डिजिटल प्लेटफॉर्म भी आपको इंटर्नशिप का मौका दे रहा है तो आप वहाँ बहुत ज्यादा सीखिए। आपको सिखाएगा नहीं बड़े चैनल्स में,
0: बिल्कुल
1: आपको खुद सीखना पड़ेगा। आपको वहाँ पे सीनियर से जाना पड़ेगा कि यह आउटपुट है, इनपुट है, असाइनमेंट ऐसा होता है, ग्राफिक्स इससे बनते हैं, वॉइस ओवर ये रूम है। जब आप खुद सीखेंगे तो सामने वाला भी आपको सिखाने की कोशिश करेगा, नहीं तो वो तो आप बोलेगा 8 घंटे की शिफ्ट है आप करिए और घर चले जाइए।
0: सही बात है,
1: वो आपको सर्टिफिकेट थमा देंगे 1 महीने।
0: क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। डियर स्टूडेंट्स, मैं तो ये कहूंगा कि इन बातों को जान लीजिए, समझ लीजिए, अपने जहन में बैठा लीजिए, अप्लाई करेगा तो निश्चित तौर पर कहीं कोई दिक्कत परेशानी आपको होगी ही नहीं। वक्त अगर आपने अभी देखा तो निश्चित तौर पर आपका वक्त नहीं आएगा, लेकिन जब आप वक्त नहीं देखेंगे तो एक न एक दिन आपका वक्त जरूर आएगा। दुनिया आपको सलाम करेगी, आपके काम की पूछ होगी। और इन बातों का यहाँ डिस्कशन करने का मतलब मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि इन बातों को जान लीजिए, समझ लीजिए। इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूं अपने गेस्ट से कि ताकि उन बातों को आप समझ पाएं जो आप अपनी जिंदगी में अपनाना चाहते हैं। वक्त है यहाँ पर एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, और मेरे साथ आनंद तिवारी जी जुड़े हुए हैं न्यूज 18 से। बहुत सारी बातें हो रही हैं, बातों का जो सिलसिला लगातार जारी है सिर्फ सुरु शादा 90.8 FM पर।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। और स्टूडियो में मेरे साथ आज एक खास मेहमान है मिस्टर आनंद तिवारी जी, जो कि न्यूज 18 से ताल्लुक रखते हैं। बहुत पीछे बहुत बड़ा अनुभव है, अलग अलग चैनल में काम किया है और खोजी पत्रकारिता में आपकी महारत हासिल है। बहुत सारी बातें मैंने यहाँ की, इसलिए बातें की ताकि एक खूबसूरत जवाब की मैं उम्मीद रख रहा था, उससे भी बेहतरीन जवाब हमें मिले। सो मैं समझता हूं कि जो स्टूडेंट्स इस क्षेत्र में आना चाह रहे हैं तो उन बातों को जब आप अपनाएंगे तो अच्छा होगा, बेहतर होगा। सर, कभी कभी इस क्षेत्र में जब आप पत्रकारिता के लिए जाते हैं, कहीं ना कहीं डर घबराहट जैसे उसके बारे में आपने बताया कि वो सारी चीजें पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी आपके सामने दिक्कतें आई होंगी, आपको लगा कि मैं आज बच ही गया, थैंक गॉड, अदरवाइज तो आज मेरी जान चली जाती। इसके अलावा दूसरी बात भी मैं इसमें जानना चाहूंगा कि जब कोई विक्टिम होता है तो आजकल हम देखते हैं कि किसी को फेस दिखा देते हैं, फिर हमें समझ में आता है कि भाई फेस नहीं दिखाना चाहिए, एथिक्स में है। तो कुछ ऐसी बातें जो हमारे स्टूडेंट्स को ध्यान रखनी चाहिए।
1: देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आप जो भी जुविनाइल होगा उसका फेस नहीं दिखा सकते हैं, चाहे वो विक्टिम हो या नहीं हो, इनोसेंट हो। दूसरा, जो रेप विक्टिम होते हैं या जो सेक्सुअल असॉल्ट के जो विक्टिम्स होते हैं, आपको उनका फेस कभी नहीं दिखाना चाहिए, ना उनका नाम। सुप्रीम कोर्ट की तो ये तक गाइडलाइन है कि आप उनके रेडियस के आस पड़ोस के घर के वीडियो फोटो भी नहीं दिखाएं, उनके फैमिली मेंबर्स के किसी के फोटो नहीं दिखाएं। तो बेसिकली रेप और या सेक्सुअल असॉल्ट की खबरों में ये बहुत बचना चाहिए। इसमें कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटना पड़ सकता है और आपके पर्सनल जो आपका प्रोफेशन है उस पे भी आपको
0: हाथ धोना पड़ सकता है। हाँ।
1: तो बेसिकली इसमें ये बहुत ध्यान रखना चाहिए। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा स्टूडेंट्स को कि जब भी कोई रेप विक्टिम्स हैं या आप सेक्सुअल असॉल्ट वाले विक्टिम्स हैं, उनके इंटरव्यू करने भी अगर आप जाते हैं तो कोशिश करिए कि उनका फेस ब्लर करें या उनका फेस ना दिखाएं। आप बैक साइड कैमरा लगा के और फिर उनका इंटरव्यू करें जिसमें उनका बैक केवल पीठ दिखे और उनकी वॉइस जाए
0: जी।
1: और कोशिश करें कि उनमें उनका नाम नहीं पूछें, उनके फैमिली के बारे में नहीं पूछें, कोई ऐसी चीज नहीं पूछें जिससे कि उनकी फैमिली की आइडेंटिटी रिवील हो। वो एक्चुअली कोर्ट ऑफ कंडक्ट भी है और होना भी नहीं चाहिए, मतलब वो। तो बाकी दूसरा आपने बताया, जब आपको ऐसी जगह पे रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं जहां आपको लग रहा है कि लाइफ थ्रेट है या आपकी जो इक्विपमेंट है उनको चोट पहुंच सकती है,
0: जान का खतरा हो सकता है,
1: जान का, तो आपको वहां पर ना आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड रख के रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। आपको बहुत भीड़ में जाने की जरूरत नहीं है, आपको तो इन्फॉर्मेशन देना है अपने चैनल्स को, विजुअल दिखाना है। आप किसी ऐसी जगह जाके विजुअल दिखाई जहाँ पे आपको पुलिस प्रोटेक्शन हो या पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हो। जैसे हम भी राइट्स कवर करने जाते हैं तो हम उसी एरिया तक रहते हैं जहाँ पे की
0: फोर्स
1: प्रेजेंस हो, पुलिस फोर्स, क्योंकि वो मीडिया को हार्म नहीं करेगी। कई मौके ऐसे आते हैं जब पुलिस वाले भी पत्रकारों को आपने देखा होगा कि उनको हार्म दौड़ाते हैं, लाठी बढ़ाते हैं। तो आपको वो देखना पड़ेगा, वो आपका दिमाग आपको ओपन रखना पड़ेगा। अभी वक्त की नजाकत क्या, उस हिसाब से आपको जर्नलिज्म करना। ये नहीं कि आप जुनून में अंदर घूम गए, उस समय पत्रकारिता में वो
0: शहीद हो जाएंगे।
1: हाँ, अपने इक्विपमेंट का भी ध्यान रखना, अपना भी ध्यान रखना। तो जब राइट्स वाली स्थिति आए तो आप एक ऐसी जगह पे जाके लाइव करें जहां से कि आप व्यूअर्स को वो विजुअल भी दिखा सके और अपनी बात भी रख सकते हैं और खुद भी सेफ होके अपना रिपोर्टिंग करें, चाहे वो आप बाढ़ की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ या जो दिल्ली में या और भी जगह जो दंगे हुए उनकी रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, या कोई ऐसी जगह जहाँ पे बहुत बड़ी आग लग गई हो या कोई ऐसी जगह चले गए हो जहाँ बहुत ज्यादा लॉ ऑर्डर सिचुएशन खराब हो सकती है, पब्लिक भड़क सकती है,
0: ध्यान
1: ये आपको रखना पड़ेगा। ये ऑफिस भी लगातार बताता है, आप न्यूज चैनल्स भी एथिक्स के बारे में बताते हैं और ये रिपोर्टर को फील्ड में या कैमरामैन जो आपके स्टूडेंट जो कैमरा पर्सन बनना चाहते हैं आगे, उनका इंटरेस्ट वीडियोग्राफी में है, स्टिल फोटोग्राफी में है, तो उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से करना है। फोटोग्राफी में भी ये कि आप माइनर्स के फोटो ना लें, छोटे बच्चों के फोटो ना दिखाएं चैनल्स पे। अभी बहुत सारी न्यूज में ऐसा होता है जब छोटे बच्चों के फोटो दिखा दिए जाते हैं, सोशल मीडिया बढ़ चढ़ कर दिखाता है, रेप विक्टिम के फोटो दिखाता, वीडियो दिखाता।
0: सर, आप इस बात को हम को रिलेट कर सकते हैं। अभी शिवाय की एक घटना घटी थी, उस बच्चे का पिक्चर नहीं आना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। अगर मैं सोच रहा हूँ तो आप मुझे भी करेक्ट करेंगे, क्योंकि वो अगर पिक्चर आएगी तो हो सकता है कि वो दिक्कतें उसके आने वाले फ्यूचर में भी हो सकती हैं, क्योंकि शिवाय का ग्वालियर की घटना थी, बच्चे का अपहरण होता है, उसके बाद वो मीडिया के सामने होता है।
1: बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए, किडनैपिंग की तो खबरें नहीं दिखाना चाहिए। किडनैपिंग की न्यूज तब आपको दिखाना चाहिए जब या तो बच्चा रिकवर हो जाए या एक्यूज जब अरेस्ट हो जाए, क्योंकि उससे बच्चे की लाइफ पर थ्रेट हो सकता है। आप एक न्यूज चला देंगे वो पूरे देश में चली जाएगी, किडनैपर्स डर के हो सकता है बच्चे को मार दें। और बहुत सारे ऐसे केस में हुआ है जब किडनैपर्स तुरंत जब उनको लगता है कि मीडिया में न्यूज आ गई तो वो उस बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने जिसमें विक्टिम्स की मर्डर कर दिए गए हैं, बाद में उनकी डेड बॉडी रिकवर होती है। तो ये पुलिस भी इसमें बहुत कोशिश करती है कि मीडिया को सारी चीजें लीक ना हो, और अगर आपकी भी एथिक्स है कि आपको ऐसी चीजें नहीं चलाना चाहिए जिससे कि कोई की लाइफ थ्रेट आपकी न्यूज से अगर हो रही है तो।
0: बहुत अच्छा।

0: लिसनर्स, कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ ये कि इन बातों को जान लीजिए, समझ लीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, प्यार का एक माहौल बना के चलेंगे, सब अच्छा होगा, बेहतर होगा। और जो ये बातें बताई गई हैं, इन बातों को जरूर जानिएगा, समझिएगा। और वक्त का इशारा हो चुका है, वक्त का जब इशारा होता है तो मैं होता हूँ 9:11। सर, दिल की गहराइयों से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने बहुत वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन हमारे लिसनर्स तक, स्टूडेंट्स तक पहुँचाई, इस बात के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, आभार सर।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके स्टूडेंट्स का भी, आपके रेडियो स्टेशन का भी।
0: थैंक यू सर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। 01204060205 पर कॉल कर आप हमें बता सकते हैं कि ये चर्चा, ये वार्ता, ये इंटरव्यू कैसा लगा। मुझे यानी गगन को दीजिए अनुमति, नमस्कार।
2: चलो अब तुम लोगों ने बहुत पढ़ाई कर ली, अब टेंशन वेंशन छोड़ दे बच्चा, हो जा फुल्ली।

शादी में पूरे गांव को दावत देंगे। एक एरोप्लेन में कायलपट्टनम के लोग होंगे, दूसरे में नरसापुरम। ए बाबू हाँ बोल दे, तेलुगु में हाँ कह

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: दुनिया भी गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
0: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
0: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: सो वेयर आर यू? द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा यूनिवर्सिटी।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: राम राम, दोस्त राम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। मैं मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूं आपके साथ और हमेशा ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से यही दुआ, यही प्रार्थना करता हूं कि आपका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी न हो। फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में 9:09 हो चुके हैं। 19 तारीख है, हमारे आसपास क्या खास है उसके बारे में जान लेना, समझ लेना बहुत बहुत बहुत जरूरी है। चलिए बात करते हैं कि हमारे आसपास यानी कि मौसम का मिजाज क्या है, मौसम क्या कह रहा है उसके बारे में बात कर लेना बहुत जरूरी है। तो फिलहाल अपडेट निकल कर ये सामने आ रही है कि मौसम का मिजाज यानी कि IMD के अनुसार, मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और वहीं बारिश और आंधी की अगर मैं बात करूं तो निश्चित तौर पर मौसम विभाग हमें अपडेट कर रहा है। लेकिन कल की अगर हम बात करें, कल भी कुछ ऐसी बातें थी लेकिन कल बारिश नहीं हुई। गौतम बुद्ध नगर समेत दिल्ली NCR में कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावनाएं हैं। लेकिन AQI की अगर हम बात करें तो AQI लगभग 136 दर्ज किया गया है अभी इस वक्त, यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक। सच बात तो यह कि वायु गुणवत्ता सूचकांक की जब भी बातें होती तो निश्चित तौर पर ये 4 महीने नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी बहुत टाइट गुजरते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन पर बैन लग जाता है और भी कई कामों को रोक दिया जाता है, व्हीकल पर ध्यान दिया जाता है, एंट्री आवागमन पर भी मतलब कहीं ना कहीं रोक लगा दी जाती है कि इस वक्त ये वाहन गुजरेंगे, इस वक्त ये वाहन नहीं गुजरेंगे। तो 4 महीने में अगर आपका कोई काम होने जा रहा है तो उसको बहुत सोचकर समझकर चलेगा, क्योंकि आने वाले 4 महीनों में अलर्ट घोषित कर दिया जाता है AQI को ध्यान में रखते हुए। आज क्या खास है उसके बारे में जानेंगे जरूर, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल योर सुरक्षा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। ट्रैफिक की अगर मैं बात करूं तो ट्रैफिक आज स्मूथ है, यानी कि कहीं कोई दिक्कत परेशानी है नहीं, क्योंकि आज है शनिवार, रात ही और नींद नहीं आती।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: नई दुल्हन तो बिल्कुल चांद जैसी है।
2: काकी, आप अपनी टीबी का इलाज तो करवा रही हैं ना?
1: हाँ बेटी, मैं टीबी की दवाइयाँ हर रोज खा रही हूँ। ये दवाई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त मिल रही है।
2: हाँ, अब तो आप और जल्दी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि अब सरकार टीबी के मरीजों को मुफ्त इलाज के साथ हर महीने 500 रुपए की मदद भी दे रही है, ताकि वो इलाज के दौरान पोषण से भरपूर भोजन ले सके, और ये मदद सीधे उनके बैंक खाते में आएगी।
1: दुल्हन सुंदर ही नहीं, समझदार भी है।
3: आइए मिलकर टीबी को हराएं, टीबी मुक्त भारत बनाएं।
4: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
5: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
7: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
6: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
7: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी, सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: अरे सुनीता, कैसे बा मुनिया?
1: नमस्ते आशा दीदी,
0: सब ठीक बा? साफ सफाई के ध्यान रखत आरू ना?
1: जी दीदी, जैसे रहुआ कहल रहनी, हर द्वार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम। जहाँ कहीं भी पानी जमा देखी नी, ओकेरा के तुरंत साफ करी नी। जैसे के पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, ट्रे, सब के साफ सफाई करी ले हम।
2: और आसपास कहूं भी टायर, नरिवल, खाली बर्तन या कौनो भी चीज में पानी

0: बेगम।
1: बस अब ली हर इतवार के साफ सफाई की जिम्मेदारी, मिलके पड़क जाओ मच्छर बन पर भारी।
2: एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
3: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
2: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।
4: राधे राधे चलो, राधे राधे चलो कहते ना कि राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। और राधे राधे चलो का जिक्र मैंने इसलिए किया कि बरसाने की ओर चलो, मथुरा की ओर चलो, वृंदावन की ओर चलो। राम राम दोस्तों, आप सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत इस्तकबाल खुशामदीद खैर मकदम अभिनंदन और एक बार फिर से राधा अष्टमी की आप सगन को बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई ये है ब्रजभाषा, ब्रजभाषा की अलग कहते ना मिठास है, अलग ही बात है, बात ही निराली है। तो सगन को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और रही बात मथुरा की, तो मथुरा में चौं और धूमधाम है, पूजा पाठ है रहे हैं, मंदिर में घंटा बज रहे हैं, घंटियां बज रही हैं। और रही बात हमारी, तो भैया सुबह सुबह हम धोताएं पूजा करके आए गए है ना, और लौंग चढ़ा के आ गए और आज हमारा उपवास है। तो ब्रजभाषा को जो आनंद है कहूँ देखू को ना मिले। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब मैं बात कर रहा हूं तो आंख बंद कर विश्वास ना करिएगा, बहुत ध्यान देने वाली बात है। बरसाने राधे रानी, लेकिन AI कह रहा है करसाने, यानी कि ब की जगह उसने का लगा दिया है। अगर आप फ्रेशर हैं, आप अगर आपको मालूमात नहीं है तो आप उस पर विश्वास कर लेंगे। अगर आपको जानकारी है, जैसे कि मुझे जानकारी है कि राधा रानी जी का जन्म स्थल बरसाने, तो हम उसको बरसाने ही बोलेंगे, न कि का लगाएंगे। तो बहुत आंख बंद कर आप विश्वास मत करेगा AI पर। फिलहाल मैं राधा रानी का जिक्र कर रहा हूं, आज राधा अष्टमी है, आप सबके लिए शुभ हो, मंगल में हो, चारों ओर खुशियां ही खुशियां हो और बस एक दूसरे से प्यार से सम्मान के साथ आगे बढ़ते रहिए और एक दूसरे पर प्यार लुटाते रहिए। नेचर जो कहती है कि बस दूसरे के भले के बारे में सोचें, अच्छा सोचें, अच्छा करें तो सब अच्छा होगा। बहुत ही प्यारा भजन मुझे लगा, डिवोशनल सॉन्ग है, तो मुझे लगा कि इसके बाद ये प्ले तो कर ही सकते हैं ना। आए है, चाहे तो वॉल्यूम अप कर सकते हैं, लेकिन गाड़ी पूरी होशो आवाज में चलाएगा, चाहे तो वॉल्यूम अप कर लीजिएगा है ना। आए है, बहुत ही खूबसूरत गाना। आए है, क्या बात है। राधे राधे।

0: मैंने वादा किया था बहू से, मैंने वादा किया था, मुझे पूरा करना ही होगा।
1: लो माँ भी आ गई। माँ देखो तुम्हारा पोता बिल्कुल मुझ पे गया है ना।
0: ये सब बाद में, पहले बच्चा इधर ला। ये ले बहू, लगा अपने सीने से और पिला दूध। देख किया ना मैंने वादा पूरा, पहले घंटे की सुरक्षा का।
2: हाँ माँ जी।
3: जन्म के पहले घंटे में बच्चे को मिले माँ के दूध और तन की गर्मी की सुरक्षा। देर की तो बच्चे की जान को हो सकता है लगभग डेढ़ गुना ज्यादा खतरा। याद रहे वादा पहले घंटे की सुरक्षा का।
4: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
6: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में 9:30 हो चुके हैं। 19 तारीख है यानी कि शनिवार। रात ही नींद नहीं आती। आए हाय, कहीं ना कहीं प्लानिंग होती है कि संडे को हम ये करेंगे। अरे यही प्लानिंग लोगों को हो जाती है शुक्रवार से, क्योंकि उनको शनिवार का अवकाश होता है आप और हम विश्वविद्यालय में। हमें जो अवकाश मिलता है वो सेकंड और फोर्थ शनिवार को मिलता है, और कहीं कहीं लोगों को अवकाश नहीं मिलता। तो जिंदगी मुझे लगता है कि शायद ऐसे ही चलती है। हर गम को भुलाते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। राधे राधे टट्टू चले आएंगे बिहारी। मैंने ऐसा क्यों कहा? सच बात तो है कि जब ईश्वर के साथ आपकी लौ लग जाती है तो सारे काम आपके बनते चले जाते हैं। और ये बात प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं, और उनकी बातों को हम सब मान रहे हैं। हम उनके फॉलोअर्स हैं, पूरा विश्व उनको सुन रहा है। बहुत आध्यात्मिक बातें होती हैं, जिंदगी की सच्चाई की बातें होती हैं। अगर आपको तकलीफ है और ये तकलीफ का जिक्र आप वहां कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि ठाकुर जी के सामने जिक्र करिए, डॉक्टर के सामने आप जाइए, ताकि वक्त रहते हुए आपका इलाज संभव हो। चलिए, ये तो रही राधाष्टमी की शुभकामनाओं की बात। अगर आज आप कहीं आ जा रहे हैं तो बहुत सोचकर समझकर संभल कर चलेगा, कहीं कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। लेकिन मेट्रो की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो सुनने में आ रहा है कि दिल्ली मेट्रो की जो रेड लाइन है वहां पर शाहदरा और वेलकम के बीच कुछ तकनीकी समस्या की वजह से ट्रेन सेवाएं प्रभावित हैं। तो थोड़ा सोचकर समझकर संभल कर चलेगा, वरना दिक्कतें परेशानियां हो सकती है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल योर सुरों शारदा 90.8 FM।

प्यार करते रहिए, बेशुमार करते रहिए, खुद से, खुदा से, दोस्तों से, नेचर से, भगवान से, जिनको भी आप मानते हैं, पूजते हैं, प्यार करते रहिए। और वही सब लोग हमें बताते भी हैं कि जब आप प्यार करते हैं तो बदले में भी आपको बहुत सारी दुआएं, शुभकामनाएं मिलती हैं। नेचर का जब मैं जिक्र कर रहा हूं तो नेचर में आप हैं, हम हैं, पशु, पक्षी, जानवर, और आप देखेंगे कि आप खुश रहते हैं, आप उनके साथ समय बिताना चाहते हैं, आप पेड़ के पास जाना चाहते हैं, उसको रोपना चाहते हैं, क्यारी को रोपना चाहते हैं, आप क्यारी में खाद लगाना चाहते हैं। एक पौधा जब पनपता है, बड़ा वट वृक्ष का रूप धारण कर लेता है, आपको बड़ी खुशी होती है कि उस पेड़ के नीचे लोग सुस्ताते हैं, गाड़ियां पार्क करते हैं। कहीं कहीं हमने देखा है कि लोग मतलबी बहुत हैं। सच बात है, आपने उसको रोपा, एक पौधे को रोपा, वहां फूल आ गए और एक व्यक्ति आया, वो फूल तोड़कर चला गया। ऐसा होता है ना आम जिंदगी में, तो ये तो सब नहीं होना चाहिए ना, है ना। ये छोटी छोटी बात है। एक खबर को जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि ऐसी ही हम बात कर सकते हैं जो कि मुद्दा आम है, खास है। कोर्ट की जो बात है मैं वो कट टू कट पढ़कर सुनाना चाहूंगा कि सहकर्मी के सामने अपमानित करना मानसिक क्रूरता है। ये उत्तराखंड की बात है, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ऐसा कहा है। ये तो आम बात है, अगर आप ऐसा किसी को कहते हैं इंसल्ट करेंगे किसी के सामने तो उसको तो बुरा लगेगा ही ना, बुरा फील करेगा। ऐसी ऑफिस में भी किसी को बुरा लग सकता है, आम जिंदगी में भी किसी को बुरा लग सकता है। आप कमरे में चले जाइए, एकांत में चले जाइए और बातों को रफा दफा करिए। अगर आप किसी के इंसल्ट करेंगे तो ये बातें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और कभी कभी तो बातें बिगड़ जाती हैं। सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 एफएम विद बी, मेरे यानी गगन के साथ। ज्ञान विज्ञान पढ़ने पढ़ाने की बातों के साथ जिंदगी को जीने की बातें इंफोटेनमेंट के साथ होती है। ब्यूटीफुल ट्रैक, किस्मत कनेक्शन फिल्म का गाना, मोहित चौहान और श्रेया घोषाल की आवाज, सिर्फ सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
0: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।
3: तुमने शादी के बाद भी ऐसे ही रहे, बिल्कुल बदलने की जरूरत नहीं है।
4: अरे वाह, आज तो एकदम शाहरुख खान निकल रहा है।
3: सच्ची?

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। जब एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का हम जिक्र करते हैं तो बाय द कम्युनिटी फॉर द कम्युनिटी, यानी कि समुदाय के जरिए सामुदायिक रेडियो समुदाय के लिए काम करता है। ज्ञान विज्ञान की बातें, हेल्थ की बातें, और जब मैं हेल्थ का जिक्र कर रहा हूं तो आज एक स्पेशल शो सुनना ना भूलेगा, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत के लिए। वर्ष 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना है तो उसके लिए छोटे छोटे कदमों से हमें आगे बढ़ना होगा, जिसमें एक बड़ी समस्या यही है कि नशा युक्त अगर युवा है तो उसको मुक्त करना होगा, है ना।
1: अजय वाह, क्या कह दिया, क्या घुमाया है तुमने, शाबाश।
0: नहीं नहीं नहीं, मुझे लगा कि ये बात करनी चाहिए।
1: हाँ, बात निकली तो दूर तलक जाएगी, शाबाश, वेरी गुड।
0: तो सुबह 10 बजे ये विशेष कार्यक्रम ना सुनना भूलेगा, मतलब आप सुनेगा सुनना ना भूलेगा, और इसमें श्री वाई के गुप्ता सर जो कि प्रो चांसलर हैं शारदा विश्वविद्यालय के, उसमें वो शिरकत कर रहे हैं। स्टूडेंट्स ने इसमें अपनी पोइम हमारे सामने रखी, साथ ही साथ एक प्ले हुआ। इसके अलावा जो डॉक्टर शांति नारायण मैम हैं उन्होंने भी अपनी बातें रखी, तो इस प्रोग्राम को हमने कवर किया और मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम सुबह 10 बजे आप सबको सुनना चाहिए। और हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं जब आप नशा करते हैं तो एक वक्त आता है कि आपका सारा रुपया खर्च हो जाता है आपकी हेल्थ को सही करने के लिए, है ना। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेल्थ तंदुरुस्त रहे, इसलिए योग करिए, अपने आप को निरोग रखिए। ब्यूटीफुल ट्रैक ऑल योर सुरशादा 90.8 FM। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ। नमस्कार, 47 मिनट, 19 तारीख शनिवार का दिन।

0: मुझे तो तेरी लत लग गई फ्रॉम द मूवी रेस टू बेनी दयाल और श्यामली कुलकर्णी की आवाज सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा 90.8 एफएम पर। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ। स्टूडियो की घड़ी में 9:54 हो चुके हैं। 19 तारीख और शनिवार का दिन, लत लगानी है तो मोहब्बत की लगाएगा, अपने काम की लगाएगा, एक्सरसाइज की लगाएगा, योग की लगाएगा, अपने करियर यानी कि अपने सपनों को साकार करने की लत लगाएंगे तो सब कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा। फिलहाल कई लोग लत लगा लेते हैं कि साइबर ठगी हमें करनी ही करनी है, जिसकी वजह से दिक्कतें परेशानी उनके साथ तो होती ही होती है, लेकिन वो दूसरे लोगों को भी परेशान करते हैं। एक ऐसी खबर हमारे सामने आ रही थी, मुझे लगा कि शॉर्ट एंड क्रिस्प में हम इस तरीके से बात कर सकते हैं, यानी कि इंटरनेशनल साइबर ठगों पर दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ है और फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया गया और इस तरीके से 23 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब आपको करना क्या है कि ऐसे लोगों से आप अलर्ट रहिए। साइबर फ्रॉड होने के जो चांसेस होते हैं, जैसे कि आपका जो सीक्रेट कोई क्रेडेंशियल है, कभी आप किसी के साथ शेयर ना करें, किसी को अपना पिन ना बताएं, CVV ना बताएं, EKYC वगैरह अपडेट हो रहा है, आप अपनी इन्फॉर्मेशन हमें दीजिए, या सरकारी आदमी हमें आप यहाँ आइए, या अपनी जानकारी हमें दीजिए, ऐसे लोगों से आपको अपने आप को बचाकर रखना होगा। और जो स्क्रीन शेयरिंग ऐप्स हैं उससे आप अपने आप को बचाकर रखें, और जो लगता है कि संदिग्ध लिंक्स पर आप कभी भी क्लिक ना करें, अलर्ट रहें, यानी कि ट्रांजेक्शन अलर्ट ऑन रखें, और जो ऑफिशियल ऐप्स हैं उनका ही आप प्रयोग करें, और कहीं कोई दिक्कत परेशानी होती है तो 1930 हेल्पलाइन नंबर है, 1930 पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी पोर्टल पर भी शिकायत कर सकते हैं। चलिए ज्ञान विज्ञान की बातों के बाद अब बात करते हैं ग्रेटर नोएडा में क्या खास हो रहा है। सुनने में आ रहा है कि आने वाले समय में टोल के लिए आपको रुकना नहीं पड़ेगा,
1: अर्थात फ्री हो जाएगा।
0: हाँ, फ्री तो नहीं होगा, लेकिन सैटेलाइट के जरिए
1: आपका कटेगा
0: टोल। हाँ, टोल कटेगा, और इसके बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जो पुराने व्हीकल हैं उस पर एक्शन तेज हो रहा है और 650 से ज्यादा जब्त किए गए हैं अभी तक व्हीकल।
1: एक बात है, जब तक कहते हैं ना कि हमारे सर पे नहीं पड़ती हम काम नहीं करते, मतलब ये 650 अभी क्यों पकड़े गए, एक दिन में क्यों पकड़े गए, दो दिन में पहले क्या कर रहे थे, पूछता है भारत।
0: बहादुर का इशारा ये कि अगर हम समय पर अपना सारा काम करते रहेंगे तो कभी लोड पड़ेगा ही नहीं। जैसे कि बाढ़ आती है तभी हम जागते हैं, नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं तभी हम जागते हैं,
1: और अभी हम जागेंगे
0: मतलब,
1: अरे मतलब होता है, मतलब ये कि AQI डिस्टर्ब होगा।
0: नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, सुनने में आ रहा है कि 4 महीने बड़े क्रूशियल गुजरने वाले हैं आप लोगों के। अगर आप कुछ प्रोग्राम सोच रहे हैं तो वो सोच कर समझ कर आप प्रोग्राम करेगा, वरना दिक्कतें परेशानियां आपके सामने हो सकती है, फिर ना कहेगा कि हमने आपको बताया नहीं। कल है रविवार, तो यानी कि संडे को फंडे में तब्दील करेगा, मंडे को होगी फिर आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहेगा, स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की आवश्यकता। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: पवन सिंह, आप हमारे साउथ में?
1: अरे हाँ भाई, लेकिन हमारे साउथ फैंस खातिर भी तो कुछ होके के चाहिए ना। गाना बुझे कि नहीं?
0: हाँ
1: चलो धूम मचाते हैं।
2: फिक्स

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: शुरुआती 2 साल है बच्चे के जीवन में खास, इसी दौरान होता है दिमाग का अधिकतम विकास। देखे, सुने, जाने, समझे और बढ़ाए हाथ, बचपन में मिली सीख रहे जीवन भर उसके साथ। माँ की सेहत से जुड़े हैं बच्चे के तार, अच्छी शुरुआत का यही है आधार। गर्भावस्था में पौष्टिक आहार अपनाएं, आयरन युक्त भोजन थाली में लाएं, जन्म के बाद 6 माह तक केवल स्तनपान, इसके बाद पूरक आहार का भी रखें ध्यान।
3: जब शरीर रहेगा स्वस्थ तो सुंदर होगा जीवन, क्योंकि सही पोषण तो देश रोशन। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। इस प्रसिद्ध शांति मंत्र का अर्थ है कि सभी सुखी रहें, सभी रोग मुक्त रहें, सभी का कल्याण हो, सभी को दुख का भागी न बनना पड़े। ओम शांति ही शांति ही शांति। राम राम, दुआ सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की हम कोशिश करते हैं अपने इस खास प्रोग्राम के माध्यम से जिसका नाम है रेडियो ओपीडी। शारदा यूनिवर्सिटी में भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, माई भारत पोर्टल और राष्ट्रीय सेवा योजना के सहयोग से युवाओं को सशक्त बनाने और सामाजिक बदलाव के लिए महत्वपूर्ण अभियान का आयोजन किया गया। और जाहिर सी बात है कि जब सुनो शारदा 90.8 FM एक विशेष कार्यक्रम चला रहा है, सेहत सही लाभ गई, तो शेक हैंड के तहत, साझेदारी भागीदारी के तहत हमने इस प्रोग्राम को कवर किया। हमने युवाओं से बातें की, हमने प्रो चांसलर श्री वाई के गुप्ता जी से बात की, हमने युवाओं के प्ले को देखा, उनके विचारों को जाना कि वो नशा मुक्त युवा कैसे बनाना चाहते हैं, नशा मुक्त भारत को वो कैसे देखना चाहते हैं। तो इसी संदर्भ में बहुत सारी बातें हुई, वो बातें मैं आपको जरूर पहुंचाऊंगा। सो कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही रेडियो ओपीडी का विशेष कार्यक्रम सेहत सही लाभ गई।

0: दोनों को ही चाहतो ने चाहतो से मारा इशारा इशारा इशारा इशारा इशारा इशारा इशारा इशारा।
1: अपने धंधे की फितरत समझिए, जब दुनिया में तनाव बढ़ता है

एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। शारदा विश्वविद्यालय में नशा मुक्त भारत का एक विशेष कार्यक्रम हम लोगों ने यहाँ आयोजित किया। सेहत सही लाभ कई के संदर्भ में सेहत की बातें हुई। लाभ कई, जब आपकी सेहत सही होगी तो निश्चित तौर पर आपको लाभ भी मिलेगा। बहुत सारी बातें हुई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था नशा मुक्त युवा और विकसित भारत राष्ट्रीय संकल्प समारोह। जब सरकार की मुहिम यही है, हमारी मुहिम यही है, हम सबकी मुहिम यही है कि आपकी सेहत तंदुरुस्त रहे, तो सेहत सही होगी तो लाभ कई होंगे। चलिए, इस विशेष कार्यक्रम का उद्देश्य मैं आपको बता देता हूँ। ये 100 हफ्तों का नशा मुक्त युवा अभियान है, जिसका उद्देश्य युवाओं को नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करना है। इसके अंतर्गत युवाओं ने, यूथ ने, जेन ज़ी ने यूथ प्लेज ली और एक व्यापक हस्ताक्षर अभियान यानी कि सिग्नेचर कैंपेन चलाया। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग क्विज 2027 भी किया गया। इसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के दृष्टिकोण में देश के युवाओं जो कि 15 से 29 वर्ष के विचारों और सामान्य ज्ञान को परखना था। इस क्विज की जो अवधि थी, जो ड्यूरेशन थी, वो थी सिर्फ 10 मिनट। इसमें देश के अलग अलग पहलुओं से जुड़े बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल किए गए यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और वहां पर एक रेफरल कोड भी दिया गया। साथ ही साथ जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनको एक डिजिटल सहभागिता प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन उन लोगों को दिया गया। और निश्चित तौर पर जो अच्छा करेगा, बेहतर करेगा, उन लोगों को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सामने अपने विचार रखने का अवसर मिल सकता है। जब मैंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जिक्र कर दिया है तो उन्होंने कहा है कि हमारे युवा हमारे देश की ताकत है, हमें उनके सपनों की रक्षा करनी चाहिए, उनकी ऊर्जा को एक उज्जवल भविष्य की ओर लेकर जाना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तो कहीं जाएगा बस, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प इस अभियान की शुरुआत 2 अगस्त 2026 से शुरू हुई और ये कुल सप्ताह यानी कि ये 100 वीक तक ये प्रोग्राम चलेगा और 100 वीक यानी कि 2 जुलाई 2028 को इसका समापन होगा। नशा अगर आप करते हैं तो आपके अंग खराब होते हैं, बॉडी के पार्ट खराब हो सकते हैं, शराब से लिवर, सिरोसिस, धूम्रपान से फेफड़ों का कैंसर और तंबाकू से मुंह का कैंसर होने का सबसे बड़ा खतरा रहता है। नशीले पदार्थों के सेवन से ब्लड प्रेशर बढ़ता है जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इम्यूनिटी कमजोर होना यानी कि शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है जिससे इंसान जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगता है। ये तो रही कुछ खास बातें। स्टूडेंट्स ने इस प्रोग्राम के तहत क्या खास किया, हम आपसे कहते हैं कि सेहत सही तो लाभ गई। इसी संदर्भ में स्टूडेंट्स ने कुछ कविताओं के माध्यम से अपनी बातें रखी, कुछ एक प्ले के माध्यम से अपनी बातें रखी, तो आइए सुनते हैं।
1: My name is Harshita and today I'm going to recite my poetry on नशा मुक्त, that is, नशे से इनकार या फिर इनकार का अभिशाप। कोप में पल रही थी एक नन्ही सी जान, कोप में पल रही एक नन्ही सी जान सिर्फ कलकारी मार सकती है, पर उसका भविष्य ना तो वो या उसकी माँ सपनों से निश्चित कर सकती है। अज्ञात थी उसकी माँ डिजिटल दुनिया की ट्रेंड से, सहेज कर रखे थे बड़े सपनों के आविष्कार, सहेज कर रखे थे बड़े सपनों के आविष्कार। पढ़ लिख कर बन जाएगी एक वैज्ञानिक, पढ़ लिख कर बन जाएगी एक डॉक्टर। बचपन से दूर रखा था आदतों से, उन बुरी आदतों से जो सपनों का बहिष्कार करते हैं, छीनते हैं युवाओं को अपने आप से। पर सिगरेट का धुआं उड़ ही रहा था कि श्वास के साथ सिमट गया माँ की कोख में, कि श्वास के साथ सिमट गया माँ की कोख में। ये धुआं सिर्फ विषैले होने का प्रतीक ना था, पर प्रतीक भविष्य की रील की दुनिया की थी, जिस रील के ट्रेंड ने नशा करने की प्राथमिकता दी। ऐसी प्राथमिकता कि अगर तुम नशा ना करो तुम जेंजी नहीं कहलाओगे, तुम जेंजी नहीं कहलाओगे, तुम तो कूल नहीं बनोगे। इस ट्रेंड के चलते उस नन्ही बच्ची ने अपने पिरोए सपने फेंक दिए नशे की नाली में। जब माँ ने रखा था बिटिया को दूर तो फिर नशे की आदत कैसे लगी, भूल कर बैठी वो उस गलती को जब नशे के धुएं ने किया था अपनी जकड़न में। क्या ये नशे से इनकार या फिर अभिशाप है? धन्यवाद।
2: Thank you, Harshita. Ladies and gentlemen, I now request again our drama club to perform a Nukkad Natak on Nasha Mukti Yuva. Please welcome them again with a huge round of applause.
3: Okay.

0: यूनिवर्सिटी के नाट्य संस्था नाट्य क्रांति लेकर आए हैं एक स्वलिखित एवं स्वनिर्देशित नुक्कड़ नाटक जिसका शीर्षक है
1: नशा मुक्ति।
2: मैं किसी के पास नहीं जाता हूँ, ना मैं किसी का दरवाजा खटखटाता हूँ। लोग मुझे खुद अपने पास बुलाते हैं, पहले मुझसे दोस्ती करते हैं, फिर धीरे धीरे करके मेरे लिए आदत बनाते हैं, उसके बाद तो मुझे मालिक समझ ही लेते हैं।
3: ये कहानी है हर एक उस बच्चे की जिसके बड़े बड़े सपने थे, जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता था, परंतु उसकी एक नादानी, एक गलती ने सब नष्ट कर डाला।
4: अरे राहुल कहाँ जा रही है भैया?
2: एग्जाम सर पे, लाइब्रेरी जाना है।
4: क्या करोगे लाइब्रेरी जाके?
2: मुझे पढ़ाई करनी है।
4: अरे ये पढ़ लिख के बनेगा आईएएस और हम सब
1: चपरासी।
2: चलो आज शाम को पार्टी है, मुझे नहीं जाना है।
4: अरे आओ ना यार।
2: बोले ना मुझे नहीं जाना है।
4: राहुल एक बार, राहुल
2: प्लीज भाई, बहुत मजा आएगा।
4: अरे इन सब की बातें मत सुनो। एक अच्छा और समझदार व्यक्ति हर लाइफ का डिसीजन खुद से लेता है, समझे?
2: लेकिन तुम कौन?
4: मैं हूँ नशा। मैं वो हूँ जो आजकल के लोग कूल समझते हैं, कोई लोग मुझे स्टेटस समझ लेते हैं, और उसके बाद मालिक तो समझते ही है, बताया तो था मैंने, समझे? अब देखो तुम्हें खुद से चुनना है, कस लो या ना लो, लेकिन साथ में मैं तुम्हारे हमेशा रहूंगा। अभी मैं यहाँ तक खींच के तुम्हें ले आया हूँ। दारू बीड़ी सिगरेट ये सब तो छोटी नशे है, मेरे पास तो सिंथेटिक ड्रग्स भी है। उसके बाद जो मजा आएगा एक बार ट्राई करके देख लेना, लेकिन खुद से इन सब की बातें मत सुनना। मैं मिलते रहूंगा तुमसे, चलता हूं अभी।
2: अरे राहुल
4: कहां
2: भाई, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे छोड़ो।
4: अरे यार पढ़ाई तो तुम रोज ही करते हो, रोज लाइब्रेरी जाते हो, आज तो एंजॉय कर लो।
2: मुझे ही सब नहीं सुनना।
5: अरे भाई जीवन भी जी लिया करो यार।
6: अरे यार तू यार नहीं है क्या मेरा?
4: रील बनाते
7: तो अभी आपने एक छोटी सी कविता सुनी, साथ ही साथ प्ले के कुछ अंश को मैंने आपके सामने रखा। तो बस यही कहते हैं कि मानसिक नुकसान ना हो, यानी कि मेंटल डैमेज ना हो। नशा शुरुआत में अच्छा लग सकता है आपको, लेकिन धीरे धीरे ये तनाव, चिड़चिड़ापन और गंभीर डिप्रेशन का कारण बन जाता है। याददाश्त कमजोर होने लगती है, दिमागी नसें कमजोर हो जाती है, जिससे सोचने समझने और फैसले लेने की क्षमता घटने लगती है। इसलिए नशा मुक्त युवा हमें बनाना है, भारत को विकसित भारत बनाना है, और इस अभियान की जो शुरुआत रही है वर्ष 2026 यानी कि 2 अगस्त 2026 से इसकी शुरुआत रही है, और समापन होगा 2 जुलाई 2028 को। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरू शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। रेडियो ओपीडी के सेहत सही लाभ कई के इस विशेष कार्यक्रम में साझेदारी भागीदारी के तहत हमने ये विशेष कार्यक्रम कवर किया और ये प्रोग्राम हमने आयोजित किया शारदा यूनिवर्सिटी में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प। इस अभियान की शुरुआत 2 अगस्त 2026 को शुरू हुई और इसका जो समापन होगा 2 जुलाई 2028 को। नशा मुक्त भारत हमें बनाना है तो सामाजिक और पारिवारिक नुकसान को हमें समझना होगा। अगर आप नशा कर रहे हैं सोशल एंड फैमिली इंपैक्ट के बारे में जानना होगा। रिश्तों में दरार आ सकती है, नशे की लत के कारण घर में रोज झगड़े होते हैं जिससे हंसता खेलता परिवार बिखर जाता है। समाज में सम्मान आप खो रहे होते हैं, नशा करने वाले व्यक्ति पर लोग भरोसा नहीं करते और समाज में उसकी प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है। आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है यानी कि फाइनेंशियल लॉस भी होता है। नशे की लत बहुत महंगी होती है, इंसान अपनी जरूरत की चीजों को छोड़कर नशे पर पैसे उड़ाने लगता है जिससे वो कर्ज के जाल में फंसता चला जाता है। चलिए इसी संबंध में सुनते हैं डॉक्टर शांति नारायण मैम को, वो क्या कहती हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली हम लोगों ने मिलजुल कर आयोजित किया।
1: गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम डॉक्टर शांति नारायणन, एनएसएस प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर शारदा यूनिवर्सिटी। टुडे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर द एनएसएस एंड एज वेल एज द यूनिवर्सिटी बिकॉज वी आर वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज दैट हैव बीन चोजन टू डू द प्रोग्राम ऑफ नशा मुक्त अभियान। सो उसके लिए आज हमारा इनॉग्रल सेरेमनी था इस यूनिवर्सिटी में। आज से हम शपथ लेते हैं कि हम नशा के अगेंस्ट हम कैंपेन करेंगे, बहुत इंटेंस तरीके का कैंपेन हम करेंगे आगे। और एज अ यूनिवर्सिटी हम पे बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम यूथ को ड्रग्स से फ्री रखें क्योंकि उससे उनका भविष्य खराब होता है। और प्रधानमंत्री ने जो मुहिम छेड़ा है नशा मुक्त का, वो हम पूरे मन से और तन से और हम लेते हैं और उनके जो संकल्प है हम उनको हम कामयाब करेंगे और ज़रूर हम अपने जो युवा है जो हमारा भविष्य है हम उन्हें नशा से मुक्त कराने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। और इस संकल्प में हम चाहते हैं कि हमारे साथ सभी लोग इस मुहिम में जोड़ें और इस मुहिम को बहुत आगे तक ले जाए ताकि भारत के जो युवा है वो इस नशा से मुक्त रहे।
2: हेल्थ के बारे में मैम आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से वो अपनी सेहत का ख्याल रखें?
1: ये उनके सेहत के लिए ध्यान रखना है कि वो अपने जो डिजिटल स्क्रीन से हट के फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। ये क्यों होता है आजकल ज़्यादा नशा, इसीलिए होता है कि वो लोग डिजिटल देखते हैं, सोशल मीडिया में अपने आप को दूसरे लोगों को कंपेयर करते हैं और वो इन्फीरियर फील करते हैं। और उस इन्फीरियोरिटी फीलिंग को करने के लिए वो लोग कहते हैं कि हाँ हम कुछ लेंगे या पीयर प्रेशर की वजह से हम लोग नशा लेंगे। तो फिर वो एक तरीके से वो एक दिन शुरू करके बहुत सारे दिन लेने की कोशिश करते हैं और इसमें फिर वो उस नशा के आधीन हो जाते हैं। इसीलिए यदि वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ में अपने एनर्जी को क्रिएटिव वेज़ में यूज़ करे तो शायद ये वाला जो नशा मुक्त का ये जो प्रॉब्लम है अभियान जो अपने प्रॉब्लम धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। और ये जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं इस नशा मुक्त अभियान के एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हम यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों और इन बच्चों को 1 से 2 और 2 से बहुत सारे बच्चे इस अभियान में जोड़े। और सारे युवा को मैं आमंत्रित करती हूँ इस मुहिम में जोड़ने के लिए।
2: बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और सुनो शारदा 90.8 एफएम यही कहता है नशा मुक्त युवा। जिस प्रोग्राम का हमने यहाँ एक वर्कशॉप आयोजित की और एक रीढ़ की हड्डी है युवा, विकसित भारत के लिए युवा का होना बहुत ज़रूरी है और आज के शब्दों में कहें कि जेन ज़ी का साथ मिलकर चलना बहुत ज़रूरी है। हमसे बात करने के लिए मैम बहुत बहुत शुक्रिया,
1: धन्यवाद।
2: सेहत सही तो लाभ कही, थैंक यू सो मच।
0: तो अभी आपने मैम को सुना, इसका उद्देश्य सिर्फ यही है इस प्रोग्राम का कि नशा मुक्त युवा हमें बनाना है। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे एक प्लैच की और बात करेंगे प्रो चांसलर श्री वाई के गुप्ता जी ने क्या कहा नशा मुक्त युवा के संबंध में। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल यू सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। प्रोग्राम का नाम है रेडियो ओपीडी और इसके तहत हम बात कर रहे हैं सेहत सही तो लाभ कई। अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि सेहत को तंदुरुस्त बनाकर रखें। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प इस अभियान की शुरुआत 2 अगस्त 2026 से शुरू हुई और ये 100 वीक का प्रोग्राम है जो कि 2 जुलाई 2028 तक लगातार चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि फिजिकल डैमेज ना हो, अगर आप चाहते हैं कि मेंटल डैमेज ना हो, अगर आप चाहते हैं कि सोशल एंड फैमिली इंपैक्ट ना हो, फाइनेंशियल लॉस ना हो, तो अपनी सेहत को तंदुरुस्त बनाकर रखिए। सेहत में बात हो रही है नशा मुक्त युवा की। अब बात आती है कि अगर दिक्कतें परेशानियां हैं तो मदद कहां से लें। राष्ट्रीय नशा मुक्त एक हेल्पलाइन नंबर है 1-444-6। इसके जरिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और नजदीकी डॉक्टर से भी आप मुलाकात कर सकते हैं, अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मेंटल स्ट्रेस को दूर रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नशा मुक्त अभियान में, नशा मुक्त युवा इस अभियान में आप और हम मिलकर प्लेज लेते हैं, एक शपथ लेते हैं।
1: मैं यह शपथ लेता हूं कि मैं किसी भी रूप में या किसी भी मकसद से कोई हानिकारक या नशीला पदार्थ नहीं लूंगा। मैं दूसरों को भी नशीले पदार्थों से दूर रहने के लिए प्रेरित करूंगा। मैं नशा मुक्त भारत बनने की दिशा में सक्रिय योगदान देने का संकल्प लेता हूं। मैं अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों और मेरे संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को नशीले पदार्थों से और उसके सेवन के बारे में, बुरे परिभावों के बारे में जागरूक करूंगा। मैं एक स्वस्थ, जागरूक और सशक्त युवा शक्ति के निर्माण के लिए समर्पित रहूंगा और विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा के संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान दूंगा। मैं जीवन में हमेशा स्वस्थ मूल्यों को अपनाऊंगा। समाज के हर व्यक्ति तक अपना नशा मुक्त जीवन का संदेश पहुंचाऊंगा और एक जागरूक, सशक्त और नशा मुक्त भारत बनने की दिशा में लगातार काम करूंगा। जय हिंद, जय भारत।
0: तो अभी आप सुन रहे थे नशा मुक्त युवा अभियान की इस शपथ को। आइए आप और हम मिलकर एक वादा करें कि नशा मुक्त वातावरण हमें बनाकर रखना है। इसी संदर्भ में हमें इंतजार था श्री वाई के गुप्ता जी का, जो कि प्रो चांसलर हैं शारदा यूनिवर्सिटी में। क्या कहते हैं नशे के संबंध में, आइए सुनते हैं।
2: भारत को नशा मुक्त बनाना है और शारदा विश्वविद्यालय ने एक मुहिम ली है। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को जागृत किया है कि हमको अगर भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है तो भारत को नशा मुक्त होना चाहिए, क्योंकि कोई भी देश तब विकसित होता है जब वहाँ के यूथ में नशाखोरी ना हो। उस पर शारदा बहुत अच्छे से काम कर रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह का आज प्रोग्राम ये हुआ है, जिस तरह से सारे स्टूडेंट्स ने क्लेज ली है और कुछ रुककर नाटक भी हुए हैं, जिससे सोसाइटी एट लार्ज को और यूथ के अंदर ये मैसेज जाए कि हम सबको ड्रग्स नहीं लेना है, नशे से दूर रहना है और इसी से हम आने वाले समय में भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाएंगे, विकसित राष्ट्र बनाएंगे।
0: थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। अभी आप सुन रहे थे प्रो चांसलर श्री वाई के गुप्ता जी को। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? 0120-4060-205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं। फिलहाल वक्त का इशारा मैं होता हूँ 9:11। अपना ख्याल रखिए, क्योंकि जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है, और इसलिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम आपके साथ जुट जाते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आप को तनाव फ्री रखिए और नशे के आदि आप न होइए। नशा करना है तो मोहब्बत का करिए, अपने काम का करिए, अपनी सेहत का करिए, जिम जाने का नशा करिए और देखिएगा आपकी सेहत तंदुरुस्त होती चली जाएगी। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: जब सुरक्षित हैं वे लोग जिन्हें अधिक है टीबी होने की संभावना, तभी साकार होगी टीबी मुक्त भारत की कामना।
3: पहली से मौजूद स्वास्थ्य परिस्थितियाँ टीबी होने की संभावना को बढ़ा सकती हैं। इस वर्ग में आप या आपका परिवार भी हो सकता है। इस समूह में आते हैं वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान या शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित
4: टीबी रोगी के साथ रहते हों,
3: मधुमेह रोगी, HIV से पीड़ित लोग।
2: तो टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपनी जांच कराएं। अगर टीबी ना हो तो जरूरत पड़ने पर टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी से सुरक्षित हो जाएं, अन्यथा निशुल्क दवा और उपचार का लाभ उठाएं। आइए हम सब मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
5: ट्रीट एवरी टीबी पेशेंट बेस्ट एट द वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी।
6: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
7: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने वाले हैं डाइजेशन के विषय में। अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत है तो निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो नहीं सकती, लेकिन अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत नहीं है, डाइजेशन सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है, तो दिक्कतें परेशानी आपके सामने आती रहेगी। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही कि खराब से खराब डाइजेशन को एक दिन में सुधार देंगे, यानी कि ये 5 जूस। वो कौन कौन से 5 जूस हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, और जूस पीने का सही तरीका भी। चलिए विस्तार से बात करते हैं। खराब डाइजेशन कई बीमारियों का कारण बन सकता है, इसलिए डाइजेशन को दुरुस्त रखने के लिए 5 हेल्दी जूस जरूर पिएं। बेहतर पाचन के लिए हेल्दी जूस बहुत आवश्यक है। पाचन से जुड़ी समस्याएं बहुत असहज हो सकती हैं, काफी दर्दनाक भी, लेकिन बहुत से तरीकों से इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसा करने का एक सबसे आसान तरीका है हेल्दी जूस पीना, जो विटामिन, मिनरल्स और डाइजेस्टिव एंजाइम से भरपूर होते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी हेल्दी जूस के बारे में जो आपके पाचन तंत्र के लिए काफी लाभदायक हो सकते हैं। बात करते हैं अदरक का जूस के विषय में। तो बात सामने आती है कि अदरक का जूस एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जो पेट के डिस्कम्फर्ट से राहत दिलाता है और हेल्दी डाइजेशन होने में मदद करता है। अदरक का जूस बनाने के लिए आपको अदरक छील लेना है और उसे छोटा छोटा काट लें। अब थोड़े से पानी के साथ इसे ब्लेंड कर लें और इसके पल्प को छान लें। आप स्वादानुसार नींबू का रस या फिर शहद भी मिला सकते हैं, इससे ये आपको कड़वा नहीं लगेगा। अब बात अनानास का जूस। जी हाँ, अनानास में ब्रोमेलिन नाम का तत्व अधिक मात्रा में होता है, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सकता है और इन्फ्लेमेशन कम करने में सहायक होता है। अनानास के जूस का सेवन करने से पाचन में लाभ मिल सकता है और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। आपको केवल ताजा अनानास लेना है, उसे थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। अब इसे छान कर पी सकते हैं। अब बात नींबू के रस की। नींबू का रस भी प्रकृति में अम्लीय होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। नींबू की साइट्रिक प्रकृति गुर्दे की पथरी की संभावना को कम करने में मदद करता है। बात एलोवेरा जूस की। एलोवेरा अपनी हीलिंग गुणों के लिए जाना जाता है, इससे इन्फ्लेमेशन कम होने में मदद मिलती है। इससे पेट में हेल्दी बैक्टीरिया का उत्पादन बढ़ता है और पाचन में भी मदद मिलती है। आपको केवल एलोवेरा जेल को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। गाजर का जूस। गाजर में फाइबर अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है और ये पाचन तंत्र को रेगुलेट करने में मदद करता है। इससे हेल्दी बाउल मूवमेंट्स में भी मदद मिलती है। अगर आप इसे नियमित रूप से पीते हैं तो पेट में इन्फ्लेमेशन भी कम हो सकती है और पेट में हेल्दी बैक्टीरिया के उत्पादन में भी मदद मिलती है। आपको केवल गाजर को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड करके छान कर पी लेना है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: अरे डब्बा ले आ। बेटा जल्दी आ, स्कूल को लेट हो रहा है।
2: आई पापा। क्या पापा जगह जगह थूकते रहते हो?
1: वो
2: मैं अपने नए नए दोस्त में बनाऊंगी। पापा
3: क्या हो बेटिया?
4: डॉक्टर साहब,
5: आपकी बेटी को टीबी है और ये आपकी ही देन है।
3: मैंने ऐसा क्या कर दिया?
2: पापा आज से आप एक प्रॉमिस करो कि आप थूकोगे नहीं।
4: वादा करता हूँ बेटिया, अब ऐसे कभी नहीं थूकूंगा, प्रॉमिस।
5: पब्लिक प्लेसेस पर थूकना बंद कीजिए, अपनी बुरी आदतें बदलकर एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत का निर्माण कीजिए।
6: बेटर लेट देन नेवर। तो देर भले हो गई हो, लेकिन अब ये थूकने की आदत छोड़ देनी चाहिए।
7: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
8: जन्म के समय लगे कमजोर, 14 दिन बाद भी वृद्धि हो कम, छूने पर लगता हो ठंडा या फिर लगता हो गरम, जन्म के पहले दिन या 14 दिन बाद भी आंख और शरीर हो पीला या शरीर दिखता हो नीला, सांस लेने में हो परेशानी, अगर दूध पीने में हो कठिनाई, सांस चलती हो तेज या धंसी लगती हो छाती, त्वचा पर हो छोटी फुंसियां 10 या फिर दिखे बड़ा फोड़ा, नवजात लगे सुस्त या बेहोश या पड़ता हो उसको दौरा, फूला हुआ लगे पेट, हो दस्त या हो रहा हो किसी अंग से रक्त स्त्राव, कटा फटा हो होंठ, चिपका हो तालू, सर में पड़ी हो गांठ, समझ लो बच्चे की है हालत खराब। इन लक्षणों का तुम लेना सारा ज्ञान, अच्छे से सब कर लो इनका ध्यान, देखते ही ये लक्षण 102 एम्बुलेंस बुलाना और अपने बच्चे को तुरंत SNCU ले जाना। आपका ख्याल ही आपके परिवार को स्वस्थ रखता है, इसीलिए ना करना इन लक्षणों को नजरअंदाज, क्योंकि फर्क पड़ता है।
9: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित

0: शुरुआती दो साल है बच्चे की जीवन में खास, इसी दौरान होता है दिमाग का अधिकतम विकास। देखे सुने जाने समझे और बढ़ाएं हाथ, बचपन में मिली सीख रहे जीवन भर उसके साथ। माँ की सेहत से जुड़े हैं बच्चे के तार, अच्छी शुरुआत का यही है आधार। गर्भावस्था में पौष्टिक आहार अपनाएं, आयरन युक्त भोजन थाली में लाएं। जन्म के बाद 6 माह तक केवल स्तनपान, इसके बाद पूरक आहार का भी रखें ध्यान।
1: जब शरीर रहेगा स्वस्थ तो सुंदर होगा जीवन, क्योंकि सही पोषण तो देश रोशन। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शुरुआती दो साल है बच्चे के जीवन में खास, इसी दौरान होता है दिमाग का अधिकतम विकास। देखे सुने जाने समझे और बढ़ाए हाथ, बचपन में मिली सीख रहे जीवन भर उसके साथ। माँ की सेहत से जुड़े हैं बच्चे के तार, अच्छी शुरुआत का यही है आधार। गर्भावस्था में पौष्टिक आहार अपनाएं, आयरन युक्त भोजन थाली में लाएं, जन्म के बाद 6 माह तक केवल स्तनपान, इसके बाद पूरक आहार का भी रखें ध्यान।
1: जब शरीर रहेगा स्वस्थ तो सुंदर होगा जीवन, क्योंकि सही पोषण तो देश रोशन। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

शुरुआती दो साल है बच्चे के जीवन में खास, इसी दौरान होता है दिमाग का अधिकतम विकास। देखे सुने जाने समझे और बढ़ाए हाथ।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: शुरुआती दो साल है बच्चे के जीवन में खास, इसी दौरान होता है दिमाग का अधिकतम विकास। देखे सुने जाने समझे और बढ़ाए हाथ, बचपन में मिली सीख रहे जीवन भर उसके साथ। माँ की सेहत से जुड़े हैं बच्चे के तार, अच्छी शुरुआत का यही है आधार। गर्भावस्था में पौष्टिक आहार अपनाएं, आयरन युक्त भोजन थाली में लाएं। जन्म के बाद 6 माह तक केवल स्तनपान, इसके बाद पूरक आहार का भी रखें ध्यान।
1: जब शरीर रहेगा स्वस्थ तो सुंदर होगा जीवन, क्योंकि सही पोषण तो देश रोशन। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: हाय, मैं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका वही मनपसंद कार्यक्रम खेत खलियान लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों, आज भी हमारे गांव में शहर में ऐसे नागरिक मौजूद हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वो खुद का घर बनवाने में और पुराने घर की मरम्मत करवाने में सक्षम नहीं है। तो ऐसे सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना और ग्रामीण आवास योजना चलाई जा रही है। अगर आप गांव में रहते हैं तो आप ग्रामीण आवास योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर आपका जो गांव है वो शहरी क्षेत्र में आता है तो आप शहरी आवास योजना का लाभ उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से नागरिकों को घर की मरम्मत करवाने और घर बनवाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी और इस योजना के अंतर्गत देश के अनेक राज्यों में लाखों नागरिकों को पक्के मकान बनवाने के लिए आवास योजना की राशि उनके बैंक खातों में दी भी जा चुकी है। और अब किसान मित्रों बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्रता की। तो किसान मित्रों, ऐसे परिवार जो मिट्टी के कच्चे घरों में निवास कर रहे हैं उनको इस योजना का लाभ दिया जा रहा है, और ऐसे नागरिक जिनको अभी तक भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से कोई भी आवास योजना का लाभ नहीं दिया गया है। देश के ऐसे नागरिक जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है तो उनका पक्का घर बनवाने के लिए इस योजना के अंतर्गत पैसा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में महिलाओं को आवास के लिए विशेष प्राथमिकता दी जाती है। इससे महिलाएं खुद के घर की मालिक बनकर समाज में सशक्त हो सकती हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जिन प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है उसमें आधार कार्ड, आय का प्रमाण पत्र, BPL सूची का फोटोकॉपी, आवेदनकर्ता का बैंक खाता, मोबाइल नंबर, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो। तो हमारे वो गरीब बहन भाई जिनको अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है वो अपने नजदीक जन सुविधा केंद्र पर जाकर प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में, और आइए अब आपको ले चलते हैं मनोरंजन की तरफ और आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं योगेंद्र निमचाना।

किसान मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, अधिक उत्पादन के लिए खेती में अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करना पड़ता है, जिससे खेती में अत्यधिक लागत आ रही है और जल, भूमि, वायु और वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है। साथ ही खाद्य पदार्थ भी जहरीले हो रहे हैं। इसीलिए इस प्रकार की सभी समस्याओं से निपटने के लिए जैविक खेती करने की सिफारिश हमारे कृषि वैज्ञानिक करते हैं। भारत सरकार भी इस खेती को अपनाने के लिए प्रचार प्रसार कर रही है। साथ ही राष्ट्रीय जैविक खेती मिशन भी चला रही है, जिसके अंतर्गत जैविक खेती करने वाले किसानों को वित्तीय सहायता भी दी जाती है और जैविक खेती करने के तौर तरीके भी सिखाए जाते हैं। किसान मित्रों, रासायनिक खादों के बेहिसाब प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति दिन प्रतिदिन नष्ट होती जा रही है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति बचाने में जैविक उर्वरक काफी कारगर हैं। तो किसान मित्रों, आप भी जैविक खेती करके कम लागत में अधिक उत्पादन कर सकते हैं। इसके लिए बस जरूरत है आपको जागरूक होकर जैविक खेती करने के तौर तरीके से भली भांति परिचित होने की। जैविक विधि द्वारा खेती करने से उत्पादन की लागत तो कम होती है, इसके साथ ही आपको आय अधिक प्राप्त होती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्पर्धा में जैविक उत्पाद अधिक खरे उतरते हैं, जिसकी वजह से आप सामान्य उत्पादन की अपेक्षा अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसान मित्रों, आधुनिक समय में निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि की उर्वरा शक्ति का संरक्षण और मानव स्वास्थ्य के लिए जैविक खेती की राह अत्यंत लाभदायक है। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही जैविक खेती की, और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं ज्ञानेंद्र सरधाना और किस्सा रहेगा रामायण का।

किसान मित्रों, अभी आप ज्ञानेंद्र सरधाना से ये रागनी सुन रहे थे, किस्सा था रामायण का। किसान मित्रों, ऐसा देखा गया है कि हमारे जो पशुपालक भाई हैं वो दुधारू पशुओं पर तो बहुत अधिक ध्यान देते हैं, मगर जो नवजात और छोटे पशु हैं उन पर इतना ध्यान नहीं देते और उनके प्रबंधन को महत्वपूर्ण नहीं समझते, क्योंकि उनसे उन्हें कोई तत्कालिक लाभ नहीं मिलता है। और किसान मित्रों, आपको बता दें कि एक शोध से ये बात सामने आई है।

कि उचित प्रबंधन के अभाव में 15 से 20% जो नवजात पशु होते हैं वो जन्म के 1 महीने की अवधि में मर जाते हैं। तो सभी पशुपालक भाइयों को ये बात समझनी चाहिए कि पशुधन का भविष्य नवजात पशु की देखभाल और प्रबंधन पर निर्भर करता है, और प्रत्येक पशुपालक को नवजात और छोटे पशुओं के प्रबंधन संबंधी सभी बारीकियों को ध्यान में रखना चाहिए। किसान मित्रों, नवजात पशुओं को दिया जाने वाला सबसे पहला और सबसे जरूरी आहार है माँ का पहला दूध, मतलब खीस। खीस का निर्माण माँ के द्वारा नवजात पशु के जन्म से 3 से 7 दिन बाद तक किया जाता है, और ये नवजात पशु के लिए पोषण और तरल पदार्थ का प्राथमिक स्रोत होता है। ये नवजात पशु को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध करवाता है जो उसे संक्रामक रोगों और पोषण संबंधी कमियों का सामना करने की क्षमता देता है। यदि खीस उपलब्ध हो तो जन्म के बाद पहले 3 दिनों तक नवजात पशु को खीस पिलाते रहना चाहिए। जन्म के बाद खीस के अतिरिक्त नवजात पशु को 3 से 4 सप्ताह तक माँ के दूध की आवश्यकता होती है। उसके बाद नवजात पशु वनस्पति से प्राप्त मांस और शर्करा को पचाने में सक्षम हो जाता है। नवजात पशुओं को खिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्तनों को अच्छी तरह साफ रखना चाहिए। इन्हें और खिलाने में इस्तेमाल होने वाली अन्य वस्तुओं को साफ और सूखे स्थान पर रखना चाहिए। नवजात पशुओं के रहने के स्थान पर अच्छा बिछौना होना चाहिए ताकि आराम से और सूखी अवस्था में वो रह सकें। लकड़ी के बुरादे या पुआल का इस्तेमाल बिछौने के लिए सबसे अधिक किया जाता है। नवजात पशु के ऐसे बाड़े जो घर के बाहर हों, आंशिक रूप से ढके हुए और दीवार से घिरे होने चाहिए ताकि धूप की तेज गर्मी या ठंडी हवा या फिर यूं कहें वर्षा और तेज हवा से नवजात पशु की सुरक्षा हो सके। नवजात पशुओं को बीमारियों से बचाकर रखना उनकी आरंभिक वृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इससे उनकी मृत्यु दर कम होती है। साथ ही बीमारी से बचाव बीमारी के इलाज की तुलना में कम खर्च में किया जा सकता है। नवजात पशुओं का नियमित रूप से निरीक्षण करें, उन्हें ठीक तरह से खिलाएं और उनके रहने की जगह और परिवेश को स्वच्छ रखें। तो हमारे पशुपालक भाई इन सब बातों का जरूर ध्यान रखेंगे और वो अपने नवजात पशुओं का उचित प्रबंधन करेंगे। तो पशुपालक भाइयों, ये तो आपने जाना कि हमें नवजात पशुओं की किस तरह से देखभाल करनी चाहिए। और अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं कोशिंदर खदाना और किस्सा रहेगा सत्यवान सावित्री का।

कोशिंदर खदाना द्वारा गाई गई इसी रागनी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
4: शारदा। मुझे भी तो मेहंदी लगा दे।
5: देख लो, 2 महीने के इलाज में इतना सुधार है तो अब तो मैंने दवा खानी भी बंद कर दी है।
6: टीबी की दवा तो 6 से 8 महीने लगातार चलती है, इसका मतलब कि आपने डॉट्स का कोर्स बीच में ही बंद कर दिया।
5: ये क्या, मेहंदी अधूरी क्यों छोड़ दी?
6: तुम डॉट्स का इलाज अधूरा छोड़ सकती हो और सोचती हो कि बात बन जाएगी? जानती हो ना, अधूरा इलाज यानी टीबी ला इलाज।
7: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़े, ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
6: भाभी कल ही डॉट सेंटर चली जाना।
5: कल नहीं, अभी।
7: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
8: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से शरीर और ब्रेन हो सकता है कमजोर। ये 5 फूड्स खाकर इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हो। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कुछ रोज पहले हमने बातें की थी, लेकिन अब हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं तो बात निकल कर ये सामने आती है कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए कुछ फूड्स बताए गए हैं, वो अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आपकी सेहत में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बात करते हैं। विटामिन B12 की कमी की समस्या काफी कॉमन है, हालांकि कई बार लोग इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाने के बाद मसल्स में कमजोरी और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं? विटामिन B12 DNA बनाने का काम करता है, जो ये नर्वस सिस्टम को काम करने में भी सहायता करता है। हमारा शरीर विटामिन B12 का उत्पादन खुद नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी कमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। हम जानेंगे ऐसी फूड्स के बारे में जिनके सेवन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जा सकता है। बात करते हैं विटामिन B की कमी क्यों होती है, ये भी जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रिया पालन के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मसल्स में कमजोरी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, एनीमिया और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा के लिए डॉक्टर पायल कुछ विशेष फूड्स के सेवन की सलाह देती है। चलिए जानते हैं, सालमन मछली की बात करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 पाया जाता है, इसके लिए आप सालमन और टूना मछली का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के विषय में। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स में हरी पत्तेदार सब्जियां और कई फलों का नाम भी शामिल है। केला, पालक और चौलाई जैसी सब्जियों का सेवन करने से आपको विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। वहीं सीजनल फ्रूट्स का सेवन भी करने से विटामिन B12 मिल सकता है। लो फैट पनीर के विषय में जानते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, चीज और दूध का सेवन करने से विटामिन B12 की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है।

दोस्तों, बनी के चेहरे पे तो लाखों निशार होते हैं, और जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। मेहरबानों, आज सत्यवादी की परीक्षा ली जा रही थी। स्वयं विश्वामित्र तीनों प्राणियों को लेकर के काशी में पहुंच गए। आवाज लगाई, इन्हें कोई खरीदने वाला हो तो सौदा करिए। मेहरबानों, कोई नहीं आया। तो देखिए, स्वयं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई, हमें खरीदने वाला कोई हो तो हमें खरीदिए, और 60 भार सोना

0: बेटा दाई माँ से बात कर लेना, पर सब का समय नजदीक आ रहा है, उन्हें कभी भी आना पड़ सकता है।
1: दाई क्यों माँ, गांव में अस्पताल है, बच्चे का जन्म वहीं कराएंगे।
0: पर बेटा हमारे खानदान में सब लोग दाई के हाथों से ही जन्म लेते हैं, अब ये अस्पताल अस्पताल।
1: पहले का समय कुछ और था, अब तो इतनी सुविधाएं हैं, बच्चे का जन्म अस्पताल में ही होगा।
2: बिल्कुल सही कह रहा है आपका बेटा।
3: अरे आशा बहू आओ आओ।
2: सुरेश की अस्पताल में प्रसव कराने की सोच एकदम सही है, अस्पताल में प्रसव सुरक्षित और फायदेमंद होती है। जैसे बच्चे का जन्म प्रशिक्षित डॉक्टर और नर्स के द्वारा होता है, प्रसव के बाद खतरे के लक्षण पहचानकर उनका तुरंत इलाज किया जा सकता है, साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है ताकि जच्चा बच्चा को कोई संक्रमण ना हो, खून की जरूरत पड़ने पर वो स्थिति संभाल सकते हैं। इसके साथ ही जननी सुरक्षा योजना के तहत सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने पर माँ को प्रोत्साहन धनराशि भी मिलती है, और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत अस्पताल में जांचों, दवाओं, एम्बुलेंस, ऑपरेशन, खून और खान पान आदि की भी सुविधा बिल्कुल मुफ्त है।
0: बिल्कुल सही कह रही हो आशा बहू। सुरेश बच्चे का जन्म अब सिर्फ अस्पताल में ही होगा।
2: जे हुई ना बात, तो आप भी समझ गए ना, बच्चे का जन्म सिर्फ अस्पताल में, क्योंकि अस्पताल में प्रसव कराने से फर्क पड़ता है।
4: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्म सिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। हमारा सामुदायिक रेडियो स्टेशन यही कहता है कि हम सबको महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। और भारतीय संस्कृति की अगर मैं बात करूं तो ये सच है, महिलाओं का आदर किया जाता है और उनको पूजा भी जाता है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम दूसरी पिक्चर अगर देखें तो कहीं ना कहीं ये बातें सामने आती हैं कि महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार भी होते हैं, यानी हिंसा भी होती है। तो यही एक प्रयास है कि महिला हिंसा के खिलाफ सामूहिक प्रयास। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम बात करेंगे आशा वर्कर के बारे में। आज हम बात करेंगे महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए कानूनी उपाय के विषय में। बात करते हैं कानून के बारे में, बात करेंगे अपराध के बारे में और कानूनी कार्यवाही के बारे में। तो सबसे पहले कानून आता है गर्भधारण एवं प्रसव पूर्व जांच तकनीक अधिनियम। ये अधिनियम गर्भधारण के पूर्व या बाद में लिंग निर्धारण की रोकथाम के लिए है। अपराध किस तरीके का अपराध है, आइए बात करते हैं। अल्ट्रासाउंड और एमनियोसिंटोसिस यानी बच्चेदानी के पानी की जांच, इसके माध्यम से ये पता लगाने की कोशिश करना कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की। दूसरा बिंदु इसी के अंतर्गत आता है कि कोई भी प्रयोगशाला, संस्थान या अस्पताल जो गर्भ में पल रहे बच्चे के बारे में ये पता लगाने के लिए कोई भी जांच करे कि वो लड़का है या लड़की। तीसरा बिंदु आता है इसी के अंतर्गत, कोई भी व्यक्ति गर्भवती महिला या उसके रिश्तेदारों को किसी भी तरह से ये बताने की कोशिश करे कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की। अगला बिंदु है, कोई भी व्यक्ति जो ऐसे अस्पताल का किसी भी माध्यम से प्रचार करने की कोशिश करे कि जो कि लिंग चयन की सुविधाएं प्रदान करता हो। इसी के अंतर्गत बात सामने आती है, ऐसा कोई भी अस्पताल जो लिंग निर्धारण की इन तकनीकों का उपयोग कर रहा हो और उचित अधिकारी द्वारा पंजीकृत नहीं किया गया हो। कोई भी परिवार या उनके रिश्तेदार जो गर्भ के बच्चे का लिंग जानने की कोशिश करे। आखिरी बिंदु है, जब ऐसी जांच करने के लिए महिला से निर्धारित प्रारूप में लिखित सहमति लेकर इसकी प्रतिलिपि यानी कॉपी न दी गई हो। बात सामने आती है, किसी तीसरे या अन्य व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है, ये एक सवाल है। जवाब है हाँ। कानूनी कार्यवाही क्या है, सजा का प्रावधान क्या है, बात करते हैं। किसी भी ऐसे पेशेवर व्यक्ति या कर्मचारी एवं वो व्यक्ति या परिवार को जो इस कानून का उल्लंघन करता है, उसे 3 साल तक की जेल की सजा और 50,000 रुपए जुर्माना लग सकता है। अगला बिंदु इसी में, ऐसा व्यक्ति या परिवार जो कि इस अधिनियम के अंतर्गत आगे भी अपराध करता है, उसको 5 साल तक की जेल और 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना। क्या ये संज्ञेय अपराध है, अथवा क्या पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर सकती है? हाँ। क्या पुलिस जज के आदेश के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को रिहा कर सकती है? उत्तर है नहीं। अब बात करते हैं जो कि अगला कानून है, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा का कानून। इसके अंतर्गत बात सामने आती है अपराध की। घरेलू हिंसा में ये सभी शामिल हैं, वास्तव में किया गया कोई उत्पीड़न या उसकी धमकी जो शारीरिक, यौनिक, शब्दों के द्वारा भावनात्मक या आर्थिक हो सकता है। कानूनी कार्यवाही क्या है, सजा क्या है, बात करते हैं। 1 साल की जेल या अधिकतम 20,000 रुपए तक का जुर्माना। मुख्य बिंदु क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत एक महिला हिंसा के खिलाफ आवाज उठा सकती है और संरक्षण अधिकारी के पास घरेलू हादसे की रिपोर्ट यानी DIR डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट दर्ज करा सकती है, पुलिस थाने में FIR दर्ज करा सकती है या सीधे मजिस्ट्रेट यानी न्यायाधीश के पास जा सकती है। अगला बिंदु है, इसी अधिनियम के अंतर्गत महिला को संरक्षण का आदेश, अभिरक्षा यानी सुपुर्दगी का आदेश, आर्थिक सहायता, सुरक्षित आवास का अधिकार, आश्रय घर एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का अधिकार मिला हुआ है। सवाल आता है, क्या ये संज्ञेय अपराध है, अथवा क्या पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर सकती है? उत्तर है, गिरफ्तारी तभी होगी इस संबंध में जब अपराध या समस्या यानी कि जैसे मारपीट या दहेज से संबंधित प्रताड़ना किसी अन्य कानून जैसे भारतीय दंड संहिता IPC के अंतर्गत गिरफ्तारी लायक अपराध की श्रेणी में आते हों। अब बात आती है कि सजा क्या होगी, यानी कि कानूनी कार्यवाही क्या होगी। एक पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट जिसे कहा जाता है
न्यायाधीश जिसे घरेलू हिंसा की शिकायत मिली है या वो घरेलू हिंसा की किसी जगह पर उपस्थित है या जब उसे घरेलू हिंसा की घटना की रिपोर्ट दी जाती है, ऐसी परिस्थिति में वो अधिकारी जो अभी अभी मैंने यहाँ डिस्कस किया उन अधिकारों के बारे में उन

सुविधाओं के बारे में, राहत के बारे में, सभी आदेशों के बारे में वो बताएगा। अगला कानून क्या है, अगला सजा क्या है, अगला प्रश्न क्या है, उत्तर क्या है, इसके बारे में जानेंगे जरूर, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद।

का बहुत बहुत स्वागत आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ। आज हम बात कर रहे हैं महिला हिंसा के खिलाफ सामूहिक प्रयास और इन्हीं सारी बातों के माध्यम से हम जान पा रहे हैं समझ पा रहे हैं कि एक महिला को या एक समझदार व्यक्ति को क्या करना चाहिए। बात हो रही है कानूनों के बारे में। अगला कानून है दहेज रोकथाम का अधिनियम, दहेज दिए जाने या दहेज स्वीकार किए जाने की रोकथाम के लिए। ये बात इसके अंतर्गत आती है। अपराध यानी दहेज लेना देना या उसकी मांग करना अपराध की श्रेणी में आता है। किसी तीसरे या अन्य व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है, जवाब है हाँ। कानूनी कार्रवाई क्या है? दहेज लेने या देने के लिए कम से कम 5 साल की जेल की सजा और ₹15,000 या दहेज की राशि के बराबर का जुर्माना, दोनों में जो भी ज्यादा हो। अगला बिंदु, दहेज की मांग के लिए 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक की जेल की सजा और ₹10,000 जुर्माना। क्या ये संज्ञेय यानी कॉग्निजिबल अपराध है अथवा क्या पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर सकती है? जवाब है नहीं। अगला प्रश्न है इसी से संबंधित, क्या पुलिस जज के आदेश के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को रिहा कर सकती है? जवाब है नहीं। अब बात करते हैं अगले कानून के बारे में, बाल विवाह की रोकथाम का अधिनियम। ये एक अपराध है। किसी भी 2 व्यक्ति की शादी बाल विवाह है यदि उनमें से एक भी कानूनी रूप से बालिग होने की उम्र से कम है। सवाल पैदा ये होता है कि किसी तीसरे या अन्य व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है? जवाब है हाँ। कानूनी कार्रवाई क्या होगी यानी सजा क्या होगी? बात करते हैं, कोई भी पुरुष जो 18 साल से ज्यादा की उम्र का है, किसी नाबालिग लड़की से शादी करता है या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी बाल विवाह के समारोह का संचालन करता है या उसे कराता है, उसे 2 साल तक की जेल की सजा हो सकती है या जुर्माना हो सकता है। मुख्य बिंदु, जैसे जिन लड़कों और लड़कियों का नाबालिग उम्र में जबरदस्ती बाल विवाह कराया गया है, उन्हें ये अधिकार है कि बालिग होने के 2 साल के अंदर वो अपनी इस शादी को खत्म कर सकते हैं और कुछ परिस्थितियों में नाबालिग उम्र में की गई शादी को बालिग उम्र में पहुंचने के लिए पहले भी खत्म किया जा सकता है। अब सवाल पैदा ये होता है कि क्या ये संज्ञेय यानी कॉग्निजिबल अपराध है अथवा क्या पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर सकती है? जवाब है हाँ। क्या पुलिस जज के आदेश के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को रिहा कर सकती है? जवाब है नहीं। इसी के अंतर्गत सजा आती है, सभी कीमती सामान, पैसा और उपहार अनिवार्य रूप से वापस किए जाएंगे। यदि शादी खत्म की जाती है और लड़की को रहने के लिए एक स्थान उपलब्ध कराना होगा जब तक वो बालिग न हो जाए। इसी के अंतर्गत बात सामने आती है कि बाल विवाह से पैदा हुए बच्चे वैध माने जाएंगे और न्यायालयों से ये अपेक्षा की जाती है कि बच्चों के उचित हित को ध्यान में रखते हुए उनकी सुपुर्दगी उनके माता पिता को दी जाए। आप कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ।

बहुत बहुत स्वागत, आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। महिला हिंसा के खिलाफ सामूहिक प्रयास, इसके अंतर्गत अब हम बात कर रहे हैं महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए कानूनी उपाय के विषय में। अब बात करते हैं एक और नए कानून के बारे में, बात करते हैं भारतीय दंड संहिता यानी IPC 1860 के विषय में। कानून का नाम एसिड यानी तेजाब फेंकना, धारा 326A और B। अपराध, एसिड यानी तेजाब फेंकना या ऐसा करने का प्रयास करना चाहे इससे चोट पहुंची हो या नहीं। सवाल पैदा ये होता है कि किसी तीसरे या अन्य व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है? जवाब है हाँ। कानूनी कार्रवाई क्या होगी? कम से कम 10 वर्ष की जेल की सजा जो उम्र कैद तक बढ़ाई जा सकती है और एक उचित तर्क संगत जुर्माना, चिकित्सा संबंधी खर्चों के लिए साथ ही उत्पीड़ित व्यक्ति के लिए मुआवजा। एसिड यानी तेजाब से हमला, कम से कम 5 साल की सजा जो 7 साल तक बढ़ाई जा सकती है। हमला करने वाले को जुर्माना भी देना होगा। सवाल ये सामने आता है कि क्या ये संज्ञेय यानी कॉग्निजिबल अपराध है अथवा क्या पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर सकती है? जवाब है हाँ। प्रश्न ये भी सामने आता है क्या पुलिस जज के आदेश के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को रिहा कर सकती है? जवाब है नहीं। यौन उत्पीड़न, धारा 354, धारा 354A, धारा 509, ये कानून का नाम है। अपराध इसके अंतर्गत आता है नंबर 1, शारीरिक छेड़छाड़ और अन्य हरकतें जिसमें अनचाहे और अन्य तरह के भद्दे यौन इशारे शामिल हैं। नंबर 2, किसी तरह के यौन अनुग्रह के लिए आग्रह या मांग करना। नंबर 3, यौन संबंधित अर्थों वाली टिप्पणी करना। नंबर 4, जबरन अश्लील साहित्य, फिल्में या ऐसी कोई भी सामग्री दिखाना। नंबर 5, कोई भी अनचाहा शारीरिक, मौखिक या अन्य गैर मौखिक व्यवहार जो कि यौन अर्थों वाला है। ये सभी इंटरनेट, फोन, पत्र या फोटो के द्वारा किए गए यौन उत्पीड़न पर भी लागू होंगे। इसके अंतर्गत सवाल यह आता है कि किसी तीसरे या अन्य व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है? जवाब है हाँ। सजा, 5 साल तक की कड़ी जेल, जुर्माना या दोनों। नंबर 1 और नंबर 2 में बताए गए अपराध के मामलों में 1 साल तक की सजा या जुर्माना दोनों। सवाल ये भी सामने आता है क्या ये संज्ञेय अपराध है अथवा क्या पुलिस तुरंत गिरफ्तारी कर सकती है? जवाब है हाँ। क्या पुलिस जज के आदेश के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को रिहा कर सकती है? जवाब है हाँ, सिवा उन मामलों के जब महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक छेड़छाड़ की गई हो या यौन उत्पीड़न का प्रयास किया गया हो या यौन उत्पीड़न की चेष्टा से आपराधिक रूप से ताकत का इस्तेमाल किया गया हो। अगला कानून है कपड़े उतारना यानी निर्वस्त्र करना, धारा 354B। अपराध, किसी महिला को उसके कपड़े उतारने के लिए मजबूर करना या ऐसा करने में किसी की मदद करना। सवाल, किसी तीसरे या अन्य व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है? जवाब है हाँ। सजा, कम से कम 3 साल की सजा और ज्यादा से ज्यादा 7 साल तक की सजा और जुर्माना। क्या ये कंगनाइजेबल यानी संज्ञेय अपराध है अथवा क्या पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर सकती है? जवाब है हाँ। क्या पुलिस जज के आदेश के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को रिहा कर सकती है? जवाब है नहीं। अगला कानून है दृष्टि रति, धारा 354C। अपराध, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी महिला को उसके निजी क्षणों में देखना या उसकी फिल्म उतारना, इसमें वो भी शामिल है जब वो नहीं चाहती हो कि उसे देखा जाए। इसमें वो भी शामिल है जब महिला की स्तन, यौनंग एवं पुट्ठे खुले हुए हों। इसमें ये बात भी शामिल है कि जब वो शौचालय का प्रयोग कर रही हो या अपनी निजता में यौन क्रिया कर रही हो। सवाल ये सामने आता है किसी तीसरे या अन्य व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है? जवाब है हाँ। सजा, पहले बार के अपराध के लिए कम से कम 1 साल की जेल जो 3 साल तक की हो सकती है, दूसरी बार और उसके बाद दोबारा या फिर से किए गए अपराध के लिए कम से कम 3 साल की जेल की सजा हो सकती है जिसे 7 साल तक की बढ़ाया जा सकता है। क्या ये संज्ञेय यानी कॉग्निजिबल अपराध है अथवा क्या पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर सकती है? जवाब है हाँ। क्या पुलिस जज के आदेश के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को रिहा कर सकती है? हाँ, पहली बार सजा होने पर, दूसरी बार नहीं, दूसरी बार या उसके बाद दोबारा दृष्टि रति के मामलों में सजा होने पर। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और इस बातों का जो सिलसिला है लगातार जारी है। वाकई बहुत एक अहम खास जानकारी मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि इन बातों का आप सुन रहे होंगे, सुन रही होंगी, समझ रही होंगी और इन बातों का आप लाभ जरूर उठाएंगे। सुनते रहें
ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। हम बात कर रहे हैं महिला हिंसा के खिलाफ सामूहिक प्रयास। इसके अंतर्गत आशा वर्कर की क्या भूमिका है, हमारी आपकी क्या भूमिका है, इसी संबंध में कुछ कानूनों के बारे में हम जान रहे हैं। बात करते हैं लगातार पीछा करना, धारा 354D के अंतर्गत ये कानून है। अपराध किसी महिला का पीछा करना और उससे बार बार संपर्क करना जब उस महिला ने स्पष्ट कर दिया हो कि वो नहीं चाहती हैं कि उससे संपर्क किया जाए। इसमें इंटरनेट, इसमें ईमेल, फोन और कोई दूसरी अन्य सामग्री या यूं कहें कि सभी इलेक्ट्रॉनिक संपर्क के साधन शामिल हैं। इसमें इंटरनेट पर पीछा करना और सेल फोन और मोबाइल पर पीछा करना शामिल है। सवाल ये है कि किसी तीसरे या अन्य व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है। जवाब है हाँ। सजा कम से कम 1 साल की जेल, जो 3 साल तक बढ़ाई जा सकती है, एवं जुर्माना भी। क्या ये संज्ञेय अपराध है अथवा क्या पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर सकती है? जवाब है हाँ। क्या पुलिस जज के आदेश के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को रिहा कर सकती है? जवाब है हाँ, पहली बार सजा होने पर, दूसरी बार नहीं, दूसरी बार या उसके बाद दोबारा दृष्टि रति के मामलों में सजा होने पर। अगला कानून है मानव तस्करी, धारा 370(1) और 370A अपराध। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी महिला या बच्चे को बल प्रयोग के द्वारा धमकी, अगवा करके, धोखा और अन्य तरीकों से अपहरण करना, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, उन्हें अपने पास लेना और उनको अपने पास रखना जो उनका शोषण करने के इरादे से किया गया हो। बात सामने आती है कि किसी तीसरे या अन्य व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है। जवाब है हाँ। कानूनी कार्यवाही, इसके अंतर्गत क्या सजा आती है? बात करते हैं। नंबर 1, 7 साल से लेकर 10 साल तक की जेल की सजा, जो उम्र कैद तक की हो सकती है, और जुर्माना भी। बार बार ऐसे अपराध करने वाले और सरकारी कर्मचारी जो ऐसा अपराध करते हैं, उन्हें उम्र कैद की सजा। तीसरा पॉइंट, मानव तस्करी करके रखे गए किसी महिला या बच्चे का शोषण करने की सजा, 3 से 5 साल तक की जेल, जो कि 5 से 7 साल तक की बढ़ाई जा सकती है, और जुर्माना भी। क्या ये संज्ञेय अपराध है अथवा क्या पुलिस तुरंत गिरफ्तारी कर सकती है? जवाब है हाँ। क्या पुलिस जज के आदेश के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को रिहा कर सकती है? जवाब है नहीं। अगला कानून है बलात्कार, धारा 376 अपराध। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि महिला के मुख द्वार, योनि द्वार, मल द्वार और मूत्र द्वार में किसी व्यक्ति के द्वारा अपना मुंह, लिंग या अन्य कोई भी चीज डालना जो उसकी सहमति के बिना एवं उसकी इच्छा के खिलाफ किया गया हो। इसी के अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी तीसरे या अन्य व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है। जवाब है हाँ, सिवाय ऐसे मामलों के जब पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ उससे अलग हो जाने के बाद उसकी मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाया जाए, साथ ही जब उत्पीड़ित व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई हो। सजा की बात आती है, 7 से 10 साल तक की कड़ी जेल की सजा, जो उम्र कैद तक बढ़ाई जा सकती है, और जुर्माना सामूहिक बलात्कार के मामलों में, या यदि बलात्कार के कारण मृत्यु हो जाए या पीड़ित व्यक्ति लंबे समय तक बिल्कुल निष्क्रिय शारीरिक अवस्था में पहुंच जाए। अगला बिंदु है ऐसे मामलों में 20 साल की कड़ी जेल की सजा, जो उम्र कैद तक बढ़ाई जा सकती है, साथ ही दोबारा या बार बार ऐसे अपराध किए जाने पर उम्र कैद की सजा। क्या ये संज्ञेय अपराध है अथवा क्या पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर सकती है? जवाब है हाँ। क्या पुलिस जज के आदेश के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को रिहा कर सकती है? जवाब है नहीं, सिवाय ऐसे मामलों के जब पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ उससे अलग हो जाने के बाद उसकी मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाया जाए। अगले कानून का नाम है पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा मानसिक या शारीरिक यातना, धारा 498A अपराध। इसके अंतर्गत बात सामने आती है जो आत्महत्या का कारण बने, जिससे महिला को गंभीर चोट लग जाए, इसे दहेज की मांग करना शामिल है। किसी तीसरे या अन्य व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है। दहेज की मांग या मानसिक शारीरिक क्रूरता जिसके द्वारा चोट पहुंचती हो, कोई रिश्तेदार या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई सरकारी कर्मचारी शिकायत कर सकता है। सजा की बात आती है कि 3 साल की जेल की सजा और जुर्माना भी। क्या ये संज्ञेय अपराध है अथवा क्या पुलिस तुरंत गिरफ्तारी कर सकती है? जवाब है हाँ। क्या पुलिस जज के आदेश के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को रिहा कर सकती है? जवाब है नहीं, दहेज की मांग या मानसिक शारीरिक क्रूरता जिससे चोट पहुंचे। अगले कानून के नाम के अंतर्गत बात आती है कि यदि कोई लोक सेवा कानून का उल्लंघन करता है
ये धारा बनती है 166A। इसके अंतर्गत सजा का प्रावधान है कम से कम 6 महीने की जेल की सजा जो 2 साल तक बढ़ाई जा सकती है और जुर्माना भी। क्या ये संज्ञेय अपराध अथवा क्या पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर सकती है ऐसे केस में? जवाब है हाँ। क्या पुलिस जज के आदेश के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को रिहा कर सकती है? जवाब है हाँ। अगली बात सामने आती है, यानी कि कानून के नाम की बात मैं कर रहा हूँ, कि कोई अस्पताल अगर उत्पीड़ित व्यक्ति का इलाज करने से मना करता है, धारा 166B, सजा 1 साल की जेल की सजा और जुर्माना। क्या ये संज्ञेय अपराध है अथवा क्या पुलिस तुरंत गिरफ्तारी कर सकती है? जवाब है नहीं। क्या पुलिस जज के आदेश के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को रिहा कर सकती है? जवाब है हाँ। तो ये कुछ खास बातें कानून के बारे में, अपराध के बारे में, कानूनी कार्यवाही के बारे में मैंने आपको बताई। आशा करता हूँ कि इन बातों को आपने अच्छी तरीके से सुना होगा, समझा होगा। और जब ये सारी बातें मैं आप तक पहुंचा रहा था तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको थोड़ा ऐसा महसूस हो रहा होगा कि हम ये बातें क्यों कर रहे हैं। लेकिन ये बातें जानना समझना जरूरी है कि अगर ये अपराध हो रहा है तो आप अपनी आवाज बुलंद करें, और अगर कोई व्यक्ति ऐसा अपराध कर रहा है तो वो सजा का हकदार है। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

रहे हैं महिला हिंसा के खिलाफ सामूहिक प्रयास, और इसके अंतर्गत बात हो रही है एक आशा वर्कर के बारे में, बात हो रही है अब कानून के बारे में, अपराध के बारे में, कानूनी कार्यवाही के बारे में। बात करते हैं यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा का कानून 2012। इसके अंतर्गत 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति की यौन उत्पीड़न से सुरक्षा के लिए कानून का नाम के अंतर्गत ये बात मैंने आपको बताई। अपराध इसे इस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है जैसे कि शरीर में घुसेड़कर और अन्य विभत्स तरीके से घुसेड़कर किया गया यौन हमला। दूसरी बात, यौन हमला और अन्य विभत्स तरीकों से किया गया यौन हमला। नंबर 3, यौन प्रताड़ना। नंबर 4, एक बच्चे को अश्लील इरादे या गतिविधि के लिए प्रयोग करना। ये सभी प्रयास करना या किसी को ऐसे प्रयास करने में मदद करना भी दंड के योग्य है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा समझता है कि ऐसा अपराध हो सकता है या जानता है कि ऐसा अपराध हुआ है, उसे इसकी रिपोर्ट दर्ज करनी होगी। पुलिस को बच्चों के उत्पीड़न के सभी मामलों में FIR दर्ज करनी होगी। बात सामने आती है कि किसी तीसरे या अन्य व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है। जवाब है, कोई भी व्यक्ति जो ये जानता है कि किसी बच्चे के साथ यौन अपराध किया जा रहा है या किया जा सकता है, तो उसे अनिवार्य रूप से इसकी सूचना देनी होगी। यदि कोई तीसरा या अन्य व्यक्ति पुलिस को ऐसे अपराध की सूचना देता है जिस अपराध के लिए 3 साल से अधिक की सजा का प्रावधान है, तो पुलिस को अनिवार्य रूप से कार्रवाई करनी होगी। कानूनी कार्रवाई के अंतर्गत बात करते हैं तो ऐसी घटना की सूचना न देने के लिए 6 माह तक की जेल की सजा या जुर्माना या दोनों ही किया जा सकता है। नंबर 2, ऐसे अपराधों के लिए कम से कम 7 साल से 10 साल तक की जेल की सजा जो उम्र कैद तक बढ़ाई जा सकती है और जुर्माना। नंबर 3, बच्चों की यौन प्रताड़ना के लिए कम से कम 3 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। क्या ये संज्ञेय अपराध है अथवा क्या पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर सकती है? जवाब है हाँ। क्या पुलिस जज के आदेश के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को रिहा कर सकती है? जवाब है हाँ, यदि किए गए अपराध के लिए 3 साल से कम की सजा का प्रावधान है। नंबर 2, नहीं, जिन मामलों में 3 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है। बात करते हैं भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अन्य धाराएं। इसके अंतर्गत अपराध की श्रेणी में बातें सामने आती हैं कि महिला की सहमति के बिना गर्भपात करवाना, IPC 313। किसी महिला के ऊपर हमला या आपराधिक रूप से ताकत का प्रयोग जो उसके सम्मान को ठेस पहुंचाने की नियत से किया गया हो, IPC 342। किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या ऐसा करने की धमकी देना, IPC 503। गलत या अवैध तरीके से किसी को बंधक बनाना, जो भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को गलत तरीके से कोई दायरा बनाकर उसी में बंद होकर रहने के लिए गलत तरीके से मजबूर करता है, तो ये अवैध रूप से बंधक बनाना होगा। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति, मान लीजिए किसी को हमने नाम दे दिया ए, दूसरे व्यक्ति यानी कि नाम दे दिया बी को किसी बंद जगह में जाने के लिए मजबूर करता है और उसे वहां बंद कर देता है, और इस तरह से बी को बंद दीवारों के दायरे के बाहर कहीं भी जाने से रोका जाता है। इससे ए ने बी को अवैध रूप से बंधक बनाकर रखा है। नंबर 2, ए द्वारा बी के मकान के बाहर निकलने के सभी रास्तों पर हथियार बंद लोगों को तैनात कर दिया जाता है, और ए द्वारा बी से कहा जाता है कि ये लोग उस पर हमला करेंगे, यदि वो मकान से निकलने की कोशिश करेगा तो ए ने बी को अवैध रूप से बंधक बनाकर रखा है, और ये बात सामने आती है धारा 340 IPC के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं धारा 46 यानी धारा 46 उपधारा 4। कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी महिला को सूरज डूबने के बाद और सूरज निकलने के पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और यदि ऐसी विशेष परिस्थितियां हैं जिनमें ऐसा करना जरूरी है, तो एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट जिनके अधिकार क्षेत्र के अंदर ये जगह आती है जहां अपराध हुआ हो, जहां गिरफ्तारी की जानी है, एक लिखित आवेदन के द्वारा उनकी पहले से अनुमति ली जाएगी। अब बात करते हैं 0 FIR के बारे में। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी संज्ञेय अपराध यानी जिनके बारे में ये बताया गया है कि हो जाने की सूचना मिलने पर पुलिस FIR दर्ज करेगी। यदि ऐसा लगता है कि अपराध उस पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र के बाहर हुआ है, तब 0 FIR दर्ज किया जाना आवश्यक है। नंबर 2, यदि FIR दर्ज होने के बाद की हकीकत में ये पता चलता है कि ये मामला किसी दूसरे पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र का है, तब FIR को उस पुलिस थाने में भेजा जा सकता है।
नंबर 3, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 170 के अनुसार 0 एफआईआर दर्ज करने वाली पुलिस को

आवश्यक रूप से संबंधित पुलिस थाने में भेजना पड़ेगा। नंबर 4, किसी अपराध या घटना के होने पर यदि ये तय करने में देरी होती है कि मामला किस थाने के क्षेत्र का है, तो इससे पीड़ित व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है और इसके कारण अपराधी को भागने का मौका मिलने का खतरा भी बढ़ जाता है। अब बात सामने आती है कि यदि किसी संज्ञेय अपराध, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, उस मामले में 0 FIR या सामान्य FIR दर्ज नहीं की जाती है, तो इसके लिए संबंधित पुलिस कर्मचारी या अधिकारी पर IPC धारा 166A के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, विशेषकर यदि ये एक यौन अपराध का मामला है। बात सामने ये भी आती है कि उसे विभागीय जांच द्वारा दंडित किया जा सकता है। अब बात करते हैं चिकित्सा से संबंधित लापरवाही या किसी अन्य लापरवाही के कारण मृत्यु। इसके अंतर्गत हम बात करते हैं जल्दबाजी या उतावलेपन यानी अथवा लापरवाही के कारण हुई मृत्यु। यदि मृत्यु डॉक्टर की लापरवाही के कारण हुई है, तो इसे गंभीर लापरवाही माना जाएगा। किसी तीसरे या अन्य व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है? जवाब है हाँ। कानूनी कार्यवाही के अंतर्गत बात सामने आती है 2 साल तक की जेल की सजा या जुर्माना या दोनों। क्या ये संज्ञेय अपराध है अथवा क्या पुलिस तुरंत गिरफ्तारी कर सकती है? जवाब है हाँ। क्या पुलिस जज के आदेश के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को रिहा कर सकती है? जवाब है हाँ। तो आज हम बात कर रहे थे महिला हिंसा के खिलाफ सामूहिक प्रयास। इसके अंतर्गत आज हमने बात की इस कार्यक्रम में महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए कानूनी उपाय के विषय में। आशा करता हूं कि ये विशेष कार्यक्रम आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इससे आपने जानकारी जरूर उठाई होगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं कोई शंका है, तो 0120406205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं, या इसके अलावा 90.8 FM @sharda.ac.in पर आप हमें मेल कर सकते हैं। फिलहाल वक्त का इशारा हो चुका है, मुझे लेनी होगी आपसे अनुमति। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, महिलाओं का सम्मान करें, उनका आदर करें, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे घर में भी हमारी माँ है, बहन है। जब हम उनके लिए सम्मान चाहते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि जग में जो दूसरी माताएं हैं, जो बहनें हैं, हमें उनका भी सम्मान करना चाहिए। सुनते रहें ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हो जाने पर 6 से 8 महीने का उपचार करवाना होता है, लेकिन अगर इलाज बीच में रोक दिया तो टीबी बिगड़ सकता है और ड्रग रेसिस्टेंट टीबी बन सकता है। DRTB तब होता है जब टीबी की कुछ दवा असर करना बंद कर दे। DRTB का इलाज कठिन और लंबा है, लेकिन मुमकिन है। आधुनिक जाँच और इलाज सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त उपलब्ध है। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-66-66 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
5: The world is here.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: यार राग रस बरसे इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। अब राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है रागों के संक्षिप्त परिचय सहित रागों की स्वरमालिका और स्वरमालिका पर आधारित रचनाओं के आदर्श गायन को प्रस्तुत करती श्रृंखला राग रस बरसे। इस श्रृंखला में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी द्वारा रचित रागों की स्वरमालिकाओं को आधार के रूप में लिया गया है। आइए संगीत की इस यात्रा में हम सब शामिल हो जाएं।

राग हंस ध्वनि। राग हंस ध्वनि की उत्पत्ति बिलावल ठाट से हुई है। इस राग में मध्यम और धैवत यानी म और ध ये दोनों वर्जित स्वर हैं। इस प्रकार इसके आरोह और अवरोह में पांच पांच स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व औड़व है। इसका वादी स्वर षडज यानी स है और संवादी स्वर पंचम यानी प है। इसका गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर है। राग हंस्व ध्वनि के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार है। सबसे पहले सुनिए

राग हंस ध्वनि की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग हंस ध्वनि की स्वर मालिका की स्थाई।

राग हंसध्वनि की स्वर मालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वर मालिका पर आधारित एक रचना। बोल है, श्याम ढले उजियारा जाए। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

राग रस बरसे परियोजना परिकल्पना एवं मार्गदर्शन प्रोफेसर पी के भट्टाचार्य अनुसंधान इंद्रदेव प्रसाद विषय परामर्श संगीत निर्देशन एवं गायन निर्माल्य डे और उमा गर्ग तबला वादन मनोज कुमार नागर तानपुरा वादन शेर सिंह ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे सह निर्माण दाऊदयाल चतुर्वेदी निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा विषय समन्वय काव्य रचना निवेदन और कार्यक्रम निर्देशन प्रभुदयाल।

राग पीलू। राग पीलू की उत्पत्ति काफी थाट से हुई है। इस राग में दोनों गंधार यानी शुद्ध ग और कोमल ग तथा दोनों निषाद यानी शुद्ध नी और कोमल नी प्रयोग किए जाते हैं। इसके आरोह और अवरोह में सात सात स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति संपूर्ण संपूर्ण है। इस राग का वादी स्वर गंधार यानी ग है और संवादी स्वर निषाद यानी नी है। इसका गायन समय दिन का तीसरा प्रहर है। राग पीलू के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार हैं। सबसे पहले सुनिए आरोह।

अब प्रस्तुत है राग पीलू की स्वर मालिका, जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है इस राग की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने सुनी राग पीलू की स्वर मालिका। अब इसी स्वर मालिका पर आधारित एक रचना सुनिए। बोल है, दिन का पंछी उड़ता जाए। पहले प्रस्तुत है इसकी स्थाई

अभी आपने सुनी राग पीलू की स्वर मालिका, साथ ही सुनी इस स्वर मालिका पर आधारित रचना।

परियोजना परिकल्पना एवं मार्गदर्शन प्रोफेसर पी के भट्टाचार्य, अनुसंधान इंद्रदेव प्रसाद, काव्य रचना द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी और प्रभुदयाल खट्टर, विषय परामर्श संगीत एवं गायन हरभजन सिंह, उमा गर्ग, राकेश पंडित और कुमार मुखर्जी, तबला वादन जगदीश कुमार और सुखमय, तानपुरा वादन शेर सिंह, ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, सह निर्माण दाऊदयाल चतुर्वेदी, निर्माण रमेश रानी शर्मा और वंदना अरिमर्दन तथा विषय समन्वय निवेदन एवं कार्यक्रम निर्देशन प्रभुदयाल खट्टर।

0: हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से। यही दुआ, यही प्रार्थना कर जब आप चलते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी मंजिल आपके बेहद करीब होती हुई नजर आती है। लेकिन कभी कभी विघ्न बाधाएं आ जाती हैं, लेकिन डरने का नहीं, घबराने का नहीं। राम राम, दोस्त राम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, यानी कि मोटिवेशन वाली बातों के साथ हम आपके साथ जुड़ रहे होते हैं, राबता के माध्यम से राबता करते हैं। और इस राबता में हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ते हैं हर बार। पिछला एपिसोड बहुत ही खूबसूरत रहा, बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई, हमने कम्युनिटी कनेक्ट के बारे में बातें की। इस चर्चा को अब हम आगे लेकर जा रहे हैं और जाहिर सी बात है कि इसमें एक गेस्ट की जरूरत होती है। तो आज हमारे साथ जुड़ रही हैं शारदा सोशल बिजनेस सेंटर से, आप डायरेक्टर हैं डॉक्टर पारुल सक्सेना मैम। तो मैम एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत नमस्कार, और एक बार फिर हमें यहाँ बुलाने के लिए आपका और आपकी पूरी टीम का, सुनो शारदा का, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके सभी श्रोताओं को एक स्नेहपूर्ण नमस्कार।
0: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ये रेडियो आप ही का है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम दिल से अदा करते हैं, क्योंकि इस सीरीज को आप आगे लेकर जा रही हैं, आपका विभाग, आपका डिपार्टमेंट आगे लेकर जा रहा है, और इसी की वजह से सारा विश्वविद्यालय एक सूत में आपने पिरोया है। तो दिल से एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद मैं आपका करना चाहूंगा जिस तरीके से मैंने शुरुआत की, टेक लिया कि जिंदगी के रास्ते सरल, सुगम, आसान हो जाते हैं जब आप टेंशन नहीं लेते। कहा जाता है कि हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते, लेकिन कभी कभी जिंदगी में टेंशन आ ही जाती है। आज आपने जिस विषय को चुना है, जिस टारगेट ऑडियंस को चुना है, वो है यूथ, हमारा युवा। कहा जाता है कि भारत युवाओं का देश है, भारत युवा देश है। तो आपने सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये टारगेट ऑडियंस को क्यों चुना, और जो सब्जेक्ट है भावनात्मक स्वच्छता, इसका हिंदी रूपांतरण मैंने किया है, अंग्रेजी है इमोशनल हाइजीन। तो ये दो बातें प्लीज आप बताएं।
1: तो जैसे आपने कहा कि भारत देश जो है वो एक यंग देश माना जा रहा है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ आर पॉपुलेशन, जो हमारी जनसंख्या है, वो यंग पॉपुलेशन है, 18-35 के एज ग्रुप में है। एंड ये हमें यंगेस्ट कंट्री का खिताब जो मिलता है इस संख्या के द्वारा। तो और देखने को ये भी आ रहा है कि जिस तरह की जनरेशन से हम बात कर रहे हैं, जिस तरह की पीढ़ी से हम बात कर रहे हैं, उस पीढ़ी का जो एक अभी हाल में भी, और अगर हम आंकड़ों से जाएं, मैं आपको यहाँ पे कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूँगी कि अगर हम 2024 की बात करें, भारत देश में 1,71,000 सुसाइड्स हुई
0: जी।
1: और इसका मूल कारण जो है वो हम मानते हैं तनाव, टेंशन। आपने सुना होगा और आप शायद मेरी बात से मुखातिब भी होंगे कि अगर हम छोटे बच्चों से भी पूछते हैं, आई एम अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर,
0: यस जी,
1: मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, राइट। तो ये बातें अगर मैं और आप रिलेट करें, जिस जनरेशन, जिस पीढ़ी से हम आते हैं, वहाँ ये बड़ों से जुड़ी हुई बातें होती थी
0: जी, जी।
1: बच्चों का काम था, जैसे आपने शुरू में कहा कि हंसना, खेलना, और हंसते खेलते जीवन व्यतीत करना। तो इस चीज़ को लेते हुए एक बहुत बड़ी एक समस्या बनता जा रहा है, तनाव, टेंशन, राइट। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अब अगर प्रॉब्लम हम लोगों ने आइडेंटिफाई करी है, तो इसका जो एक हल है, एक समाधान, वो भी हमें ही ढूंढना पड़ेगा।
0: बेशक बेशक, समस्या है तो समाधान है। और हम चाहते हैं कि जिस तरीके से हमने सफ़र की बात की, सुहाने सफ़र में गीत भी होता है, संगीत भी होता है, दूसरा हमारा ये भाग है। अगर आप कहें तो छोटा सा एक म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद इस सिलसिले को आगे रखेंगे। सो लिसनर्स, आप कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। प्रोग्राम का नाम है राबता, और ये राबता कर रहे हैं, मेरे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर पारुल सक्सेना मैम, जो कि आप डायरेक्टर हैं शारदा सोशल बिजनेस सेंटर से। बस एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाएगा, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन है शारदा विश्वविद्यालय का, तो इस वजह से हम समुदाय की बातें करते हैं, आपकी बातें, ज्ञान विज्ञान पढ़ने पढ़ाने की बातें, जिंदगी को जीने की बातें, खुश रहने वाली बातें करते हैं। जिस विषय को आज हमारे गेस्ट ने चुना है वाकई बहुत ही खास विषय है। एक टारगेट ऑडियंस है यूथ, युवा, और हम बात करेंगे दबाव के बारे में, यानी कि तनाव के बारे में। वो जो तनाव यूथ ले लेता है, कहता है कि मैं दबाव में हूँ, प्रेशर में हूँ, और यही वजह है कि आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका एक सब्जेक्ट है इमोशनल हाइजीन। तो एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा, आप हैं हमारी डायरेक्टर शारदा सोशल बिजनेस सेंटर से, आप हैं डॉक्टर पारुल सक्सेना। मैम एक बार फिर से मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो सब्जेक्ट है आज आपने चुना है, मैं समझ गया कि आपने यूथ को ध्यान में रखते हुए चुना है, और आपने मुझे आंकड़े भी गिनाए कि इतने ज्यादा आंकड़े हैं जिसकी वजह से वो एक डॉक्टर बन सकता था हमारा युवा, हमारा युवा एक इंजीनियर बनकर देश में योगदान दे सकता था, और इस तरीके से आकस्मिक मृत्यु जो हुई है 1.5 लाख समथिंग कुछ आपने आंकड़ा हमें दिया। तो आपका जो सब्जेक्ट है इमोशनल हाइजीन, थोड़ा सा अगर आप हमें विस्तार में बताएं ये क्या है, ये सब्जेक्ट क्या कहता है।
1: जी तो गगन आपका काम है सवाल पूछना,
0: जी,
1: तो
0: जी,
1: आप थोड़ा रोल रिवर्सल करते हैं, तो इस बार मैं आपसे सवाल पूछती हूँ और उस सवाल के उत्तर द्वारा हम अपने श्रोताओं से कनेक्ट करेंगे।
0: जी।
1: तो अगर मैं आपसे कहूँ गगन सबसे पहले उठकर हम क्या करते हैं,
0: सबसे पहले मैं जो मैंने बात आती नैतिक शिक्षा की, जो हमने अपने घर से सीखा है, समाज से सीखा है, मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद उसका करता हूँ कि तूने मुझे आज का दिन दिखाया परवरदिगार।
1: बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद?
0: उसके बाद मैं बहुत डिटेल में आप जान रहे हैं और अच्छी बात है, मैं फिर वही डिटेल में बताना चाहूँगा। अगर मैं बिस्तर पर, जिसे आम भाषा में कहा जाए हमारा बेड है या खटिया है, कहा जाता है कि बेटा जब उठते हैं तो आप धरती माँ को प्रणाम करना चाहिए, और उसके बाद मेरी नित्य रोज की जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, तो मैम इस तरीके से भगवान का धन्यवाद करते हुए मैं अपना घर से कदम निकालता हूँ। तो ये छोटी सी एक शुरुआत रहती है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, और आपने जो बातें कही उस पर हम आगे और बात करेंगे, पर मैं आपके उत्तर में से एक जो कीवर्ड है वो उठाना चाहूँगी। आपने कहा कि मैं अपनी नित्य प्रतिक्रिया करता हूँ, और वो सभी के आई थिंक डेली रूटीन में शामिल है कि सुबह उठकर हम लोग अपने ब्रश आर टीथ, वी टेक अ शावर, राइट, और वी कॉम्ब आवर हेयर। तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर टेकिंग केयर ऑफ आवर फिजिकल हाइजीन,
0: राइट।
1: तो ये हमारी, जैसे आपने कहा कि नैतिक शिक्षा, कि भाई आपको अपनी सारी फिजिकल इम्प्योरिटीज की सफाई करनी है, ठीक है। लेकिन अब मेरा दूसरा सवाल होता है
0: जी,
1: कि हम अपनी मानसिक स्वच्छता के लिए क्या करते हैं। जैसे आपने तो बहुत अच्छी बात कही कि भाई मैं भगवान का स्मरण करता हूँ, मैं धरती माँ को प्रणाम करता हूँ, और एक बहुत ही अच्छे थॉट, एक विचार के साथ मैं आगे अपना जीवन शुरू करता हूँ कि आज किसी के लिए भी कोई बुरा काम ना हो, काम ना होगा क्योंकि आपकी सोच ऐसी है, तो वो आपकी सोच में रिफ्लेक्ट करता है और वो आपके एक्शन में रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन हम में से कितने लोग जो हैं वो इस तरह की मानसिक स्वच्छता की ओर ध्यान देते हैं। तो जो ये हमारा टॉपिक है इमोशनल हाइजीन, ये उसी को लेकर है। हम अपनी जिंदगी को जीने में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम एक पॉज लेना,
0: क्या बात है,
1: और एक ठहराव लाना, वो कहीं हम भूल चुके हैं।
0: भूल चुके हैं,
1: और हम भूल चुके हैं, तो उसी तरह से शायद हमने अपनी नई पीढ़ी को तैयार करा है, हमने अपने आगे आने वाली पीढ़ी को कंडीशन करा है कि आप भागते रहिए, आप अपने जीवन में आगे कुछ ना कुछ बढ़ते रहिए, और एक ठहराव बहुत ज़रूरी है हमारी जिंदगी में। तो वो कैसे हम ला सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट जो है, ये एक मुहिम के तौर पे मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि जो भी हमारे श्रोता है वो इसको अपनी आदत में लेकर आए, जिसको हम बोलते हैं इमोशनल हाइजीन, टू गेट क्लियर ऑफ ऑल योर इम्प्योरिटीज विच आर देयर इन योर माइंड। आपके जितने भी मानसिक विचार जो हैं उनकी सफाई या उनकी स्वच्छता का ध्यान रखना, क्योंकि आज अगेन जो हमारा टॉपिक जहाँ से हमने शुरू करा था वो है हमारे युवाओं को लेकर, और वो इतना एनग्रॉस्ड हैं आप अपने आसपास भी देखते होंगे कि बच्चे अगर एक डिवाइस छोड़ते हैं, मोबाइल छोड़ते हैं तो आईपैड छोड़ते हैं, तो लैपटॉप छोड़ते हैं, तो मे बी टीवी, तो वो इतना इनग्रॉस्ड हैं कि कहीं पे एक पॉज लेना भूल गए हैं. तो एक इस रेडियो के प्रोग्राम के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, एक हम आई वुड से कि आई वुड ट्राई टू रीटेरिएट जो आपने कहा कि नैतिक शिक्षा हमें मिली है वो सभी के पास है, पर वो कहीं ना कहीं
0: अप्लाई कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते. मैम आपकी बात को मैं समझ गया और हमारे जो श्रोता हैं, जो लिसनर्स हैं, वाकई बहुत समझदार हैं, क्योंकि आपने बहुत अच्छी एक हिंट दे दी है जिस सब्जेक्ट पर लोग कतराते हैं बात करने से. और हमारा जो युवा अगर अलर्ट हो गया, समझ गया, संभल गया, तो निश्चित तौर पर वो अपने आप को बचा कर रखेगा, अपने लिए, देश के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और वो अपना नुकसान नहीं चाहेगा. सो लिसनर्स, कहने का आशय यही है कि वाकई एक अच्छा चर्चा का विषय. इस विषय को आप जानिए, सुनिए, समझिए, और एक एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर पारुल सक्सेना मैम हमारे साथ जुड़ी हुई है. सो कहीं जाएगा मत. लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, क्योंकि हमें भी ठहराव की बहुत ज़रूरत है, एक ब्रेक की ज़रूरत है. जब बातों का सिलसिला लगातार ज़्यादा हो जाता है तो हमें भी म्यूज़िक की आवश्यकता होती है. सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुरशादा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ. प्रोग्राम है राबता.

0: जनाब म्यूजिक एक ऐसा जरिया है कि दिलों को जोड़ने का काम करता है, स्ट्रेस यानी कि तनाव को दूर करने का काम करता है, और यही एक वजह है कि गीत संगीत में जब आप खो जाते हैं तो कभी कभी आप गाते हैं, गुनगुनाते हैं या अपना मन पसंदीदा गाना आप सुन लेते हैं। तो एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत, मैं हूं गगन आपके साथ। प्रोग्राम का नाम है राब्ता और राब्ता कर रहे हैं हम, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर पारुल सक्सेना मैम जो कि डायरेक्टर हैं शारदा सोशल बिजनेस सेंटर से। मैम एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत अच्छी तरीके से विषय पर आपने रोशनी डाली। विषय का नाम है इमोशनल हाइजीन यानी कि भावनात्मक स्वच्छता। स्वच्छ रहना बहुत जरूरी है, चाहे वो मानसिक विचार हो चाहे वो आपकी हेल्थ की बात क्यों ना हो। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब मैं सुबह उठता हूं तो ध्यान भी करता हूं, ध्यान करना भी बहुत जरूरी है। और आज के परिवेश में हम देखें कि मैम ज्ञान का अथाह भंडार सोशल मीडिया के माध्यम से बह रहा होता है, किताबें भी हमने पढ़ी हैं या अच्छी अच्छी बातें हो भी रही होती हैं, लेकिन उन सब के बावजूद इंसान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत कर रहा है जिसकी वजह से वो अपने कर्मों का, कहते हैं ना आम भाषा में, खुद भागीदार है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि आप भला कीजिए, आप सकारात्मक रहिए। मुझे लगता है कि उन्होंने एक समाज में चेतना ला दी है, युवा वर्ग भी बड़े बुजुर्ग भी, हर धर्म विशेष के लोग उनसे जुड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। तो चीजें तो वही है लेकिन डिपेंड करता है कि कौन कह रहा है और क्या कह रहा है और किस तरीके से सामने वाला उसको अप्लाई कर रहा है। तो मैम मैं वाकई दिल से आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट आप लेकर आए, क्योंकि समाज में मैंने ये देखा है कि एजुकेशन सेक्टर में कुछ ऐसी घटनाएं दुर्घटनाएं घटी हैं। हमारा भी फर्ज बनता है कि उस पर हम रोशनी डालें, और वाकई आपने इस सब्जेक्ट को चुना, मैं पुनः बारंबार आपको शुक्रिया अदा करता हूं। अब मैम थोड़ा मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो चीज़ें हैं हमारे अंदर कैसे आती हैं, कैसे हम उनको आगे लेकर जाएं, कैसे अपने आप को तनाव से बचा कर रखें, वो चाहे पढ़ाई का स्ट्रेस हो या आम जिंदगी में। यूथ अगर कनेक्ट करता है तो वो कहता है कि मेरा प्रेमी या प्रेम का रूट ही है, वो एक दूसरा टेंशन भी वो लोग ले।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ फिर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी, लेकिन जैसे आप जो टिप्पणियाँ आपने करी के ये कहीं ना कहीं इस बात का जो समाधान है, जो समस्या की हम बात कर रहे हैं, हम सभी उस चीज़ से अवगत है, वी आर अवेयर ऑफ दैट। जैसे आपने कहा कि आप मेडिटेशन करते हैं या आप ध्यान करते हैं, या इतना इंफॉर्मेशन ओवरलोड है हमारे जो आजकल की जनरेशन है उनके पास इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, लेकिन बस कमी कहाँ एप्लीकेशन की है। तो आज आगे जो हम बातें करेंगे वो दो चार चीज़ें जो हम दोहराएंगे जो हमारे जीवन में ऑलरेडी हैं, पर उनको हम कैसे इम्बाइब कर सकते हैं और इमोशनल हाइजीन को कैसे अपना सकते हैं। अब मेरा सवाल आपसे है, अगर आपको कभी जैसे कट लग जाता है या थोड़ा सा जल जाता है
0: जी जी,
1: तो हमारा क्या रिएक्शन रहता है?
0: उस वक्त रिएक्शन यही रहता है कि ऐसा क्यों हो गया, नहीं होना चाहिए था, ये लापरवाही क्यों हो गई। और कहते हैं कि हर एक घटना दुर्घटना सीख देती है कि भविष्य में ऐसी कोई पुनरावृत्ति ना हो
1: जी।
0: क्योंकि अंग भंग हो जाना बड़ा नुकसान होता है, समय बर्बाद होता है, रुपया आपका बर्बाद होता है, और एक तनाव जो भी कहीं ना कहीं दिमाग में फिर रह ही जाता है
1: जी। तो इसको अगर हम मान के चले फिजिकल हर्ट कि भाई मैं सब्जी काट रही हूँ, मैं एक गृहिणी भी हूँ और मैं एक टीचर भी हूँ, और अचानक से मेरा हाथ कट गया
0: जी,
1: तो मेरा जो तुरंत रिएक्शन रहता है कि भाई हाथ कट गया, खून निकल रहा है, तो या तो मैं उसको पानी में हाथ डाल के खून को रोकना चाहूंगी, एंटीसेप्टिक से हाथ धोऊंगी, या मैं बैंडेड लगाऊंगी,
0: डिटॉल से, या आम भाषा में फिटकरी है तो कोई फिटकरी लगाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह के उपचार मेरे पास उपलब्ध है, और अगर घाव जो है वो गहरा है तो शायद हम डॉक्टर के पास भी जाएंगे कि भाई ये फिजिकल हर्ट है और हमें घाव लगा है, अब आप हमारा उपचार करिए। लेकिन क्या होता है जब एक इमोशनल हर्ट के हम शिकार होते हैं, क्या हम उसका उपचार करने की कोशिश करते हैं? स्पेशली अगर हम बात करें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इन सब बातों के लिए बात करना भी एक टैबू है।
0: क्या बात है,
1: तो ये एक टैबू है कि आप मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर कोई अपनी सिचुएशन को आइडेंटिफाई कर और आप तक पहुंचना भी चाहता है, तो वहाँ से शायद उनको उस तरह का रिस्पांस नहीं मिलता। और इमोशनल हर्ट इज मोर ग्रेवर देन द फिजिकल हर्ट, वो ज़्यादा गहरा घाव है इमोशनल हर्ट। बहुत तरह की बातें होती है आजकल के जो बच्चे बच्चे हैं वो एक एक या दो दो बच्चे ही है, बहुत लाड़ प्यार से पले हैं, तो अगर टीचर ने कुछ कह दिया या आपस में कुछ बात हो गई, जैसे आप बोल रहे थे पार्टनर से कुछ बात हो गई, अनबन हो गई है, तो क्या वो एक इमोशनल घाव को लेकर हम क्या करते हैं? ये सवाल मैंने, क्योंकि मैं एक सब्जेक्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस जो हम शारदा में पढ़ाते हैं, और मैं इमोशनल इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी प्रोपोगेटर मैं कह सकती हूँ, तो मैं अपने क्लास में भी अपने बच्चे जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स उनसे पूछती हूँ कि क्या करते हो जब आपको इस तरह का मानसिक घाव लगता है, तो उनका जवाब होता है कि मैम हम अगर हमें दुख होता है तो हम और दुख भरे गाने सुनते हैं, या अलग अलग मीन्स है, नो क्या आई फाइंड सोलेस इन फूड, गुड फूड है, तो अपने अपने कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं। पर फिर मेरा सवाल उनसे यही रहता है कि क्या आप उसको, जिस तरह से आप एक फिजिकल हर्ट को, एक शारीरिक घाव को सहेज के रखते हो, उसे बचा कर रखते हो, उसे प्रोटेक्ट करके रखते हो, क्या वही एफर्ट आप एक मेंटल हर्ट के लिए, एक मेंटल घाव के लिए, एक मानसिक घाव के लिए उतना एफर्ट आप दे पाते हैं?
0: बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, और बहुत बड़ा इशारा आप कर रहे हैं, यूथ को संभलने का आप मौका दे रहे हैं कि अगर इस तरीके से कोई दिक्कत परेशानी होती है तो घुटे ना, आम भाषा में जिसे कहा जाता है, कहा जाता है कि मन का बोझ हल्का हो जाता है जब आप अपने मन की बातें शेयर करते हैं। और सेहत सही तो लाभ कही दोस्तों, मैं तो ये भी कहूँगा कि उस दोस्त से आप ज़रूर बातें साझा करिएगा जो दोस्त आपकी बात का मजाक ना उड़ाए, भरे समाज में आपकी बातों को इधर से उधर ना करे, ऐसे दोस्त होना भी बहुत बड़ी बात है। और जिस परिवेश की हम बात कर रहे हैं, जिस माहौल की बात कर रहे हैं, आप और हम शारदा विश्वविद्यालय से ताल्लुक़ रखते हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ आपके टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, आपके मेंटोर हैं, तो आप उनसे ज़रूर बात करिएगा, क्योंकि बातों से बड़े बड़े मसले हल होते हैं। चलिए मैम, यहाँ पर इस सिलसिले को आगे ले ज़रूर लेकर जाएंगे, तो एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं। सो लिसनर्स, कहीं दूर मत जाएगा, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम, जिसके जरिए हम कनेक्ट कर रहे हैं अपने यूथ को, और प्रोग्राम का नाम है राब्ता और विषय है इमोशनल हाइजीन। सो सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
2: शादी में पूरे गांव को दावत देंगे, एक एरोप्लेन में कायलपट्टन के लोग होंगे, दूसरे में नरसापुर। ए बाबू हाँ बोल दे तेलुगु में,

0: बड़ी दुआओं से, ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से आपको, यानी कि आपके माँ बाप ने आपको मांगा है। कहते हैं कि जिस आंगन में बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। कभी कभी माँ भी नाराज हो जाती है, पिताजी भी नाराज हो जाते हैं, वो एक अलग बात होती है। सोचिए जिस घर आंगन में बच्चे ना खेलें, ना किलकारी गूंजे, तो बहुत सूना सूना वो आंगन लगता है। राम राम दोस्त, राम सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और एक विशेष कार्यक्रम सुन रहे हैं आप राब्ता। और इस राब्ता कार्यक्रम के जरिए हम राब्ता कर रहे हैं एक विषय से जिसका नाम है इमोशनल हाइजीन। और इस सब्जेक्ट पर बात करने के लिए डॉक्टर पारुल सक्सेना मैम, जो कि आप डायरेक्टर हैं शारदा सोशल बिजनेस सेंटर से, जो एक रूपरेखा बनाने का मैंने प्रयास किया, उसका मतलब मकसद सिर्फ और सिर्फ यही कि आप दुआओं से मांगे हुए हैं। बड़ी मिन्नतों से आपने जन्म लिया है और जन्म लिया है तो कहते हैं कि खुदा की, ईश्वर की नेमत है, इसको आप नुकसान ना पहुंचाएं। कहा जाता है कि बड़ी मुश्किल से मानव जन्म मिलता है। जब आप अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं तो आपके माता पिता भी सिवाय आंसू के आप उनको कुछ देकर नहीं जा रहे होते। अगर आपने उस दुख दर्द को झेला है, जाना है, समझा है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको उनकी दामन में, उनकी झोली में खुशियों से उस दामन को हम भर दें। तो मैम एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत और दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत अच्छा सब्जेक्ट आप लेकर आई हैं।
1: आपका भी शुक्रिया और आपके श्रोताओं का भी शुक्रिया जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि वो इतने पेशेंटली हमारी बात को सुन रहे हैं। और इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि अगर हमारे श्रोताओं के किसी एक या दो के जीवन में भी कोई हम एक विचार में कुछ, जैसे आपने कहा, पॉजिटिविटी लेकर आ पाए, तो आई थिंक वो उद्देश्य इस प्रोग्राम को करने का सफल
0: बहुत खूबसूरत। कल परसों मेरी किसी से बात हो रही थी, बीइंग अ मीडिया पर्सनालिटी, बीइंग अ रेडियो प्रेजेंटर होने के नाते मुझे अच्छा लग रहा है कि वाकई मैं बारंबार मैं इमोशनल हो रहा हूँ कि एक अच्छे सब्जेक्ट को आपने चुना। और जिस परिवेश में हम और आप रह रहे हैं तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। मेरे पास कुछ फ्रेशर्स आए थे, मैंने रेडियो की भाषा में समझाने की कोशिश की। मैंने कहा देखो ऐसा है भाई, एक कहावत है कि चिकने घड़े बनना हर गम को यूं करके आप भुला दीजिए, क्या आपको नहीं मिलेगा। मार्क्स अगर कम रह गए तो मार्क्स भी आपको अच्छे मिल जाएंगे। आप चाय के साथ चर्चा करिए, फिल्म देखने चले जाइए, टूर पे चले जाइए। अगर आपको और भी गम है, जो हम बात कर रहे थे प्रेमी प्रेमिका की, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को हार्म पहुंचाएं, नुकसान पहुंचाएं। तो मैंने अपने रेडियो भाषा में उनको समझाने का छोटा सा प्रयास किया,
1: क्योंकि जैसे आप बार बार दोहरा रहे हैं कि इस तरह के इकोसिस्टम से जुड़े होने के हम लोग अब एक फर्ज बनता है कि एक तरह की जागरूकता हम लेकर आए। तो यहाँ मैं दो इम्पॉर्टेंट बातें कहना चाहूँगी जो हम बात कर रहे हैं इमोशनल हाइजीन की, कि एक तो बहुत ज़रूरी है कि अगर हम अपने इकोसिस्टम में, ये सभी लोगों के लिए है, ना सिर्फ लोग जो इस तरह की इमोशनल हर्ट से या मेंटल प्रेशर से जो है वो जो गुजर रहे हैं, बल्कि उनके आसपास के लोगों, जो लोग जुड़े हुए हैं, जैसे माता पिता या टीचर या अभिभावक या आपके दोस्त, के इट्स हाई टाइम वी लर्न टू आइडेंटिफाई द सिम्टम्स।
0: ये मेरा सवाल था मैम, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत।
1: तो इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे डॉक्टर हैं, तो हम सभी को एक डॉक्टर बनना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चीज़ें वो बहुत तेज़ी से फैल रही है। और कई बार आप इस सिचुएशन में होते हैं, आप अपने उस सिचुएशन में होते हुए आप बहुत बड़ा चीज़ को डायग्नोस नहीं कर पाते, लेकिन अगर आप एक थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से, एक जो इस सिचुएशन के बाहर खड़ा हुआ है और उस नज़रिए से आप देखते हैं, तो आप उन सिम्टम्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो जैसे आपने कहा कि आपके मेंटर्स हैं या आपके टीचर्स हैं या आपके पीयर ग्रुप है, तो उन लोगों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है कि इस तरह के अगर हम सिम्टम्स देखें, तो जैसे आपने कहा कि दिस इज़ नॉट समथिंग टू टैबू अबाउट, ये कोई गलत बात नहीं है। जिस तरह से हमें फिजिकल हर्ट होते हैं, हमें बीमारियां होती हैं, शारीरिक बीमारियां होती हैं, और हम उसका उपचार करने की कोशिश करते हैं, तो इसी तरह से कोई मानसिक तनाव है या कोई मानसिक प्रेशर है तो उसका उपचार भी उपलब्ध है, और ये चीज़ जो है वो बहुत आसानी से ठीक हो सकती है।
0: बहुत खूबसूरत मैम, वाकई बहुत एक अच्छा सवाल जो मैम की तरफ से खुद ही आया और उसका बहुत खूबसूरती के साथ मैम ने जवाब दिया। मैं भी थोड़ा होमवर्क कर रहा था, मेरे भी दिमाग में यही सवाल था कि इसका आंसर मैं आपसे जानूं। तो मैम आपने जो बात रखी लिसनर्स, बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जिंदगी बहुत बहुत बहुत खूबसूरती से प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए। और फिर कहता हूं, बारंबार कहता हूं कि ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की आवश्यकता, क्योंकि लोग अक्सर ऐसा सोचते हैं मैम कि टेंशन लेने का नहीं टेंशन देने का। मेरा मानना यह कि ना टेंशन लेने का ना टेंशन देने का, खुश रहने का, क्योंकि जब आप खुशनुमा माहौल बनाते हैं तो आप खुश रहते हैं, आपकी तरक्की होती है, बरकत होती है। लेकिन जब आप एक ताना बाना बुनते हैं कि मैं उसको नीचा कैसे दिखाऊं, उसको गिराने की कोशिश मैं कैसे करूं, तो मुझे लगता है कि आप वहीं उलझ कर रह जाते हैं और आपकी तरक्की बरकत रुक जाती है, थम जाती है। तरक्की बरकत आपको एक ना एक दिन मिलेगी जरूर, कछुए की चाल से धीरे धीरे धीरे धीरे कोशिश करते रहिए, खुद पर और खुदा पर यकीन रखिए, तो निश्चित तौर पर कामयाबी आपको मिलेगी जरूर। हाँ जी बेटा गगन, ये तो नई लाइन आ गई। ये मेरे साथ बहादुर होते हैं और बहादुर ने इशारा कर दिया कि गगन इसको कॉपीराइट करा लीजिएगा। तो मैम छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद हम अपनी बातों को समापन की ओर जरूर लेकर जाएंगे। सो छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर शुरशादा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: तुझसे है कैसा ये राब्ता। राब्ता बहुत ही शीर्षक, बहुत ही खूबसूरत नाम, और इसके जो जन्मदाता हैं आप हैं डॉक्टर पारुल सक्सेना मैम। आपने बहुत ही खूबसूरत नाम इस प्रोग्राम का रखा है, और आप डायरेक्टर हैं शारदा सोशल बिजनेस सेंटर में, आप यहाँ कार्यरत हैं, और आप एक सब्जेक्ट को चुन कर लेकर आई हैं जिसके बारे में सुनना समझना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं तो ये भी कहूँगा कि सिर्फ यूथ ही इस प्रोग्राम को ना सुने, अपने पेरेंट्स को भी आप कार्यक्रम को ज़रूर सुनाइए। इमोशनल हाइजीन के बारे में बातें हो रही हैं, भावनात्मक स्वच्छता के बारे में बातें हो रही हैं। मैम ने यह भी बताया कि आपके शरीर को थोड़ा सा नुकसान हो जाता है तो आप अलर्ट हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जब आप अंदर से टूट रहे होते हैं, मानसिक तनाव होता है, तो तब हम क्या करें। आपने ये भी कहा कि लोगों से मिलिए, बातचीत करिए, बातचीत के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें हल हो जाती हैं। तो मैम फाइनली मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अगर हम इस प्रोग्राम को कंक्लूड करें, कोई ऐसी बात जो आपसे छूट रही है, जो आप कहना चाहती हैं यूथ से, जैसे कि मैंने जिक्र किया पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़रूरी, तो आप कह सकते हैं।
1: जी, तो सबसे पहले मैं वो इकोसिस्टम को लेकर ही जो हम बात करते हैं कोपिंग मैकेनिज्म, कि हम किस तरह से तनाव, देखिए हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, हर स्टेज पे, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, किसी ना किसी बात का तनाव हम लोगों को रहता है। तो यहाँ पे क्योंकि हम एकेडमिशियन है और एक विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे मैं उजागर करना चाहूँगी कि ये जो कॉन्सेप्ट है जो हम तनाव की बात करते हैं, वो सेंस हाइले साहब ने इसको प्रोपोगेट करा था, और उन्होंने कहा था कि सम स्ट्रेस इज नेसेसरी टू लीड अ लाइफ बट इट शुड नॉट बी डिस्ट्रेस। राइट, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस,
0: समझने की जरूरत है
1: जी। तो हमें

0: अगर एज अ पेरेंट एज अ गार्जियन इफ वी कैन इम्बाइब दैट इन टू आर डे टू डे लाइफ के सिर्फ ये ना पूछ के हाउ आर यू, अगर हम इसको थोड़ा सा रिफ्रेस करें हाउ आर यू फीलिंग टूडे, तो बहुत जो है एक डिफरेंस बनेगा लाइफ में, क्योंकि वो एक फ्रेज हमें एक मौका देगा अपनी एक्सप्रेशंस को, अपने विचारों को दूसरे के समक्ष रखने का. तो यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो प्रेशर कुकर से तो वाकिफ होंगे. तो कहते हैं कि वो सीटी इसीलिए लगाई जाती है कि वो प्रेशर धीरे धीरे रिलीज होता था. तो बस वही जो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है हमें अपने लाइफ में अप्लाई करना है कि जहाँ हम एक मौका दे सकें एज अ फ्रेंड, एज अ टीचर, एज अ मेंटोर, एज पेरेंट, एज कोलीग्स टू अदर पर्सन टू एक्सप्रेस देमसेल्फ विदाउट बीइंग जजमेंटल. बहुत ज़रूरी है कि हम उनको उनकी बात को सुनें, क्योंकि कई बार ये होता है कि बच्चा आके कुछ हमसे बात कहना चाहते हैं और एज अ पेरेंट ऑल्सो हम जजमेंटल हैं, तुमने ही कुछ गलत करा होगा या तुम्हारी ही गलती रही होगी. तो वो क्या है, हम बच्चे को धकेल रहे हैं, अपने कोलीग्स को धकेल रहे हैं कि वो आके हमसे बात ना शेयर करें. तो इमोशनल हाइजीन जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये बात हम ध्यान में रखें कि जब हम किसी सिचुएशन किसी इंडिविजुअल के साथ डील कर रहे हैं तो वी हैव टू डील विद एन ओपन माइंड. हमें नहीं पता वो पर्सन किस तरह की दुविधा से प्रेशर से गुजर रहा है.
1: बहुत खूबसूरत.
0: दूसरी बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि जैसे आपने नैतिक शिक्षा की बात करी, तो मैं उस नैतिक शिक्षा के सूत्र को लेकर कहना चाहूँगी. आपको याद हो अगर हमारे पुराने घरों में सुबह उठते के साथ ही श्लोकों का जो है वो उच्चारण होता
1: जी,
0: था
1: जी,
0: चाहे वो गायत्री मंत्र क्यों ना. तो अभी एक स्टडी हुई है लखनऊ में एक इंस्टीट्यूट में, सेंटर फॉर बायोमेडिकल रिसर्च, जहाँ पे क्योंकि लोगों का मानना है कि जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो सिर्फ अप्लाइड साइंसेस तक एप्लीकेबल है, जहाँ हम फिजिक्स की बात करते हैं या केमिस्ट्री की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे सोशल साइंसेस में भी बहुत एक्सपेरिमेंट्स होते हैं. और एक एक्सपेरिमेंट किया गया जहाँ पे दो ग्रुप्स को लिया गया, एक ग्रुप जिनको सिर्फ इंग्लिश और हिंदी आती थी और एक ग्रुप जिनको संस्कृत आती थी. और जिन लोगों को इंग्लिश और हिंदी आती थी उनको कुछ दिन तक संस्कृत के श्लोकों का जो पार्ट है वो सुनाया गया, और उनका फिर एक फंक्शनल MRI, एक एडवांस लेवल का MRI है और वो किया गया. और उस फंक्शनल MRI में आप इंस्ट्रक्शन देते जाते हैं और जो भी आपका रिस्पोंडेंट होता है वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके काम करता है. तो उसमें जो MRI ब्रेन का हुआ तो उनका रिस्पॉन्स पहले जब सिर्फ वो इंग्लिश और हिंदी जानते थे और जब उसके बाद जब उन्होंने संस्कृत श्लोक का जो पठन सुनना शुरू करा उसमें बहुत अंतर था. तो आप जिस भी मज़हब से आप बिलोंग करते हैं, आप हर किसी मज़हब में आपको वर्सेस मिल जाएंगी, कुरान की आयतें मिल जाएंगी, या अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो आपको श्लोक मिल जाएंगे. तो एक हैबिट बना सकते हैं कि हम अपने घरों में सुबह के टाइम इसका उच्चारण जो है वो करें. उसका इफ़ेक्ट, क्योंकि ये कोई एक मैजिक पोशन नहीं है कि हम पिए और वो तुरंत दिखे, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ लाइफ जो है वो दिखेगा. दूसरी चीज़, आप आई जस्ट टेक टू मोर मिनट्स टू वाइंड अप. जब हम जनरेशन जी की बात करते हैं तो ये आप भी मुझसे जो है बहुत हद तक सहमत होंगे, दे थ्राइव ऑन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जैसे 2 मिनट्स नूडल, 30 सेकेंड्स ऑफ यूट्यूब शॉर्ट्स,
1: सब कुछ
0: तुरंत अभी है. तो इसके विपरीत थोड़ा हमें जाना पड़ेगा, जैसे हमने पहले पॉज की बात करी थी. और अगेन एज एन एकेडमिशियन जब मैं यहाँ कुछ कह रही हूँ तो ये जो चीज़ें हैं वो साइंटिफिकली प्रूवन है, ये शोध के द्वारा जो है वो स्थापित की गई है. तो एक कॉन्सेप्ट है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, जो मिशेल वॉल्टर एक थ्योरिस्ट हैं, उन्होंने स्टैनफोर्ड में ये एक्सपेरिमेंट करा था. और उन्होंने 5 साल के बच्चों को लिया और उनको मार्शमेलो, जैसे हमारे यहाँ जलेबी होती है या बर्फी होती है, उस तरह की मिठाई है अमेरिका में, तो उन्होंने उन बच्चों को वो मिठाई उनके सामने रखी और इंस्ट्रक्शंस के साथ छोड़ा कि आप अगर ये मिठाई 15 मिनट तक नहीं खाते हैं और 15 मिनट तक वो रेजिस्ट कर पाते हैं तो आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, आपको 1 मिठाई के बदले 2 मिठाई दी जाएगी. तो इस तरह से उन्होंने ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन को उस मिठाई के साथ एक बंद कमरे में छोड़ दिया जिसमें कैमरा लगा हुआ था. तो जब थोड़ी देर के बाद आए कुछ बच्चे, बहुत इंटरेस्टिंग है, यूट्यूब पे

0: अवेलेबल है अगर हमारे श्रोता से देखना चाहें तो, हाँ। तो बच्चे मुंह बनाते हैं, कोई उसको लिक करता है, कोई चाटता है, कोई उसको खा भी लेता है। और फिर जिन बच्चों ने वो टेम्पटेशन रेजिस्ट नहीं कर पाए थे, ये एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है हमारे एकेडमिक्स में, तो उन्हीं ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को लेकर 15 साल बाद फिर स्टडी की गई
1: जी।
0: जो बच्चे 5 वर्ष के थे वो अब 20 वर्ष के हो गए, और उनका जैसे हमारे यहाँ कॉलेज में प्रवेश के लिए एक एग्ज़ाम होता है, उनका एग्ज़ाम सेट स्कोर के नाम से होता है, तो उनके सेट स्कोर उन बच्चों के एग्जामिन की गए, तो जिन बच्चों ने उसको टेम्पटेशन को रेजिस्ट करा था, उस मिठाई को नहीं खाया था, उनके स्कोर काफ़ी बेहतर थे उन बच्चों के कंपेरिजन में जो मिठाई को रेजिस्ट नहीं कर पाए थे, और तुरंत दे गिव इन टू द टेम्पटेशन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, और तुरंत वो मिठाई उनके मुंह में चली गई थी। तो देयर वाज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन देयर परफॉर्मेंस। तो क्या इसे हम निकालते हैं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रेजिस्ट आवर टेम्पटेशंस एंड टू डीक्लटर आवर थॉट्स। संस्कृत में एक बहुत अच्छी वर्स है जो मुझे अपने स्कूल के दिनों की याद दिलाती है, और हमारे स्कूल की डायरी में लिखी होती थी, तमसो मा ज्योतिर्गमय।
1: जी
0: राइट, दैट इज फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। अस्तो मा सद्गम्य, लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम ऑल साइड्स। तो पॉजिटिविटी लाइफ में, जैसे आपने कहा, जीवन बहुत ही सुंदर है और बहुत ज़रूरी है कि हम नेगेटिविटी को हम जो है ऑल टुगेदर एलिमिनेट नहीं कर सकते अपनी लाइफ में से। कोई ना कोई हमें मिलेगा जो हमारे विचारों से सहमत नहीं करेगा, और जो शायद हमें ह्यूमिलेट भी करेगा, जो चाहे हमें बुरा भला भी कहे।
1: जी जी
0: जी। तो बहुत ज़रूरी है कि उस नेगेटिविटी को दूर रखकर इमोशनल हाइजीन प्रैक्टिस करके, जैसे आपने कहा कुछ दो चार बातें जो आई थिंक हम सभी को मालूम है, ये एक माध्यम है रिटीरिएट करने का। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो चीज़ें कॉन्शियस लेवल पे नहीं करते, तो एक कॉन्शियसनेस लेकर आने का कि जहाँ पर हम और आप मिलकर मेडिटेशन, चाहे वो 2 मिनट, और मेडिटेशन ज़रूरी नहीं कि आप आग बंद करके बैठे, आप सिर्फ चुपचाप एक कोने में बैठे, एक इंट्रोस्पेक्शन करें कि आपका पिछला दिन कैसे गुजरा और वो दिन कैसे बेहतर हो सकता था। क्या आप वॉक कर रहे हैं तो एक मेडिटेटेड वॉक, जैसे हम कहते हैं कि हर एक कदम पे हम ओम नमः शिवाय बोलेंगे या जय श्री राम बोलेंगे, तो एक मेडिटेटेड वॉक आप कर सकते हैं। और फिर म्यूजिक, जैसे आपका रेडियो स्टेशन तो है ही हमेशा, तो जब भी आपको ऐसे लगे इस तरह के नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो आप म्यूजिक का सहारा ले सकते हैं, बहुत सूदिंग इफेक्ट होता है म्यूजिक का भी। अदरवाइज आप यंग जनरेशन है, आप स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं।
1: बहुत खूबसूरत मैम, बहुत खूबसूरती के साथ आपने हर एक सवाल का जवाब दिया, और जिस तरीके से लास्ट में आकर आपने चौके छक्के मारे, या कहें कि मतलब इन बातों को अगर लिसनर्स, अरे नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको मंच पर यूं कहें कि मंच संभालते हुए देखा, मैं आपसे सीख रहा हूं। और बस लिसनर्स हम यही कहेंगे कि फिर अपने शब्दों को दोहराऊंगा कि वाकई ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए, अपने अंदर खुशियाँ तलाशिए, ज़माने में खुशियाँ तलाशिए, खुशियाँ बांटिए। और जिस तरीके से मैडम ने बात की कि पेरेंट्स की जो भूमिका है उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, हमारा फ़र्ज़ बनता है एक दोस्ताना व्यवहार के साथ उसके बच्चे के दुख दर्द को हम बांटें, दुख दर्द को कम करने की कोशिश करें, वो खुशनुमा माहौल बना कर दें ताकि वो अपने मन की बात हमसे साझा कर पाए, शेयर कर पाए। अदरवाइज कभी कभी ऐसा माहौल बन जाता है कि जिसकी वजह से बच्चे हिम्मत नहीं कर पाते, अपने अभिभावक से अपने मन की बात साझा नहीं कर पाते। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम, दिल की गहराइयों से एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपकी टीम का, क्योंकि आप एक ऐसे सूत्र हैं जो हम अपने आस पास की कम्युनिटी के साथ जुड़ पाते हैं। तो एक बार फिर बहुत तहे दिल से आपको और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, और आशा रखते हैं कि हम आगे भी मिलेंगे और कुछ ऐसे
1: बेशक अच्छा करेंगे, कमाल करेंगे, धमाल करेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और फिर यही कहेंगे कि ना टेंशन लेने का, ना टेंशन देने का, खुश रहने का, बिंदास रहने का, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM का ये विशेष कार्यक्रम। राब्ता कैसा लगा जरूर हमसे राब्ता करेगा 0120404 0205 पर। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।

हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर टीबी की मुफ्त जांच, मुफ्त इलाज और पोषण सहायता उपलब्ध है। मन में हो टीबी से जुड़ा सवाल तो करें टोल फ्री नंबर पर कॉल 1800-11-6666। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।
0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने जा रहे हैं किडनी पेशेंट के लिए बेस्ट है 5 फूड। आइए जानते हैं कि गुर्दे की बीमारी में किस तरीके से ये फायदा पहुंचाता है। जी हाँ, एक संतुलित शाकाहारी डाइट गुर्दे के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम कर सकता है। बात करते हैं किडनी पेशेंट के लिए डाइट क्या है। तो बात सामने आती है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए किडनी को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है और संतुलित आहार किडनी की बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप शाकाहारी हैं तो ऐसे कई पोषक तत्व युक्त खाद्य पदार्थ हैं जो किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता कर सकते हैं और किडनी रोग के खतरे को कम कर सकते हैं। बात करते हैं कि हम 5 शाकाहारी खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे जो किडनी पेशेंट के लिए फायदेमंद हो सकते हैं और जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। तो बात पत्तेदार साग के विषय की। पालक, बथुआ, करीमुआ, सरसों, केल, कोलार्ड ग्रीन्स जैसी पत्तेदार हरी सब्जियां किडनी के स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प हैं। इनमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है और आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इन सागों में डाइटरी फाइबर भी अधिक होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने और वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। अपने आहार में पत्तेदार सब्जियां शामिल करने से किडनी की कार्य क्षमता में मदद मिल सकती है और क्रॉनिक किडनी रोग का खतरा कम हो सकता है। अब बात करते हैं बेरीज की। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रॉस्पबेरी और क्रेनबेरी जैसी बेरीज एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और फाइबर से भरपूर होते हैं। इनमें पोटेशियम भी कम होता है जो उन्हें किडनी के लिए अनुकूल फल बनाता है। बेरीज में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और ये ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद कर सकता है जो किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। नाश्ते के रूप में मुट्ठी भर फ्रेश बेरीज का आनंद लें या पौष्टिकता बढ़ाने के लिए उन्हें स्मूदी, सलाद या दलिया से जोड़ें। बात फलियों की। दाल, छोले, काली बीन्स और राजमा सहित विभिन्न फलियां प्रोटीन और फाइबर के उत्कृष्ट स्रोत हैं। उनमें सोडियम की मात्रा कम होती है और मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक खनिजों की अच्छी मात्रा प्रदान करते हैं। फलियों में संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है जो उन्हें हृदय के लिए स्वस्थ विकल्प बनाता है। अपने आहार में फलियां शामिल करने से ब्लड प्रेशर के स्तर को बनाए रखने और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। बात साबुत अनाज की। किनोआ, ब्राउन राइस, जौ और ओट्स जैसे साबुत अनाज किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है और ये मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन बी जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। साबुत अनाज में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है और टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को कम करता है जो किडनी रोग का एक प्रमुख कारण है। बात फूल गोभी की। फूल गोभी एक बेहतरीन सब्जी है जो किडनी के लिए फायदेमंद हो सकती है। इसमें पोटेशियम कम होता है और विटामिन सी, फोलेट और फाइबर का अच्छा स्रोत होता है। फूल गोभी का उपयोग आलू जैसे हाई पोटेशियम खाद्य पदार्थों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है जिससे ये किडनी की समस्या वाले लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है। फूल गोभी को भूनकर या भाप में पकाकर साइड डिश के रूप में खा सकते हैं।
2: हाय, मैं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नील डिमेलो, डू यू टेक कैरल वास एज योर लॉफुली वेडेड वाइफ?
2: आई डू।

0: take Karen Vaz as your lawfully wedded wife?
1: I do.

0: missing in the house.
1: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: अब तो तुम्हारी तबीयत काफी बेहतर लग रही है। टीबी का इलाज सही से हो रहा है ना?
2: बेहतर, बल्कि अब तो मैंने दवा खानी भी छोड़ दी है।
1: मतलब डॉट्स की दवा बीच में ही छोड़ दी है?
2: अबे, शेव कैसे बनती है वो भी सिखाना पड़ेगा। देखता नहीं दाढ़ी अधूरी छोड़ दी है।
1: शेव जैसी छोटी बात की तो बहुत परवाह है, लेकिन जिंदगी की परवाह नहीं है। सुना नहीं, रेडियो पर सारा दिन बताते हैं कि इलाज अधूरा छोड़ा तो टीबी लाइलाज हो जाएगी।
3: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़ें। ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
1: कल ही डॉट सेंटर चला जा।
2: कल नहीं, अभी।
3: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।

0: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 एफएम सुनो शारदा।
1: डेंगू और मलेरिया का दी एंड। दिमागी बुखार का दी एंड। ये
2: तारा तुम कर क्या रही हो? तारा
1: तारा लड़ रही है अब्बा मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से।
2: ओह,

0: मच्छरों पे कैसे करना है वार, ये बताएंगे अगली बार।
1: तुम सब भी हो जाओ तारा की तरह तैयार। हो जाओ तैयार, आज मच्छरों पे होगा जम के वार।
0: हेलो, मैं हूँ रिपोर्टर तारा और आज हम बात करेंगे एक खास मेहमान से।
2: हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ मच्छर और मैं और मेरी सेना बनाते हैं डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और दिमागी बुखार। मुझको पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है।
0: वो तो देखा जाएगा मिस मच्छर, पर सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम हमें काटती क्यों हो?
2: क्योंकि हमें अंडे देने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है और वो हमें मिलता है तुम्हारे खून से।
0: ये बात तो रिपोर्टर तारा को पता ही नहीं थी।
2: तुम्हें तो ये भी पता नहीं होगा कि हम एक बार में 100 से 400 अंडे तक देते हैं। हम अपनी पूरी

0: और तुम बच्चों और गर्भवती महिलाओं को हमसे सबसे ज्यादा खतरा है।
1: ये बात है तो हम बच्चे भी मच्छरों से ठिशुम ठिशुम लड़ने के लिए तैयार है।
2: क्या कहा तुमने? Kids want to know, Miss मच्छर, कि अब तुम्हारा क्या प्लान है?
0: अब तुम्हारे घर और बाहर या आसपास जहाँ भी ठहरा हुआ पानी होगा, मैं वहाँ अपना घर बना लूंगी और बहुत सारे अंडे दूंगी, बहुत सारे अंडे दूंगी।
1: आहा, मिस मच्छर को नहीं पता कि तारा ने पानी जमा होने वाली हर जगह को पहले से ही साफ कर दिया है।

0: जहाँ जहाँ पानी होगा जमा, आऊंगी मैं वहाँ वहाँ।
1: चलो दोस्तों, बन जाओ टीम तारा, जहाँ भी जमाओ पानी, कर दो उसकी सफाई, फिर मच्छर और बीमारियों को बाय बाय।
2: टीम तारा है भैया।
3: अगली बार हम सीखेंगे मच्छरों से बचने के और उपाय।
1: फिलहाल रिपोर्टर तारा और अप्पा की ओर से
2: गुड बाय।

0: अब मैं जाऊंगी उनके पास जो नहीं है तारा की तरह तैयार।
1: टीम तारा, मच्छर आ रहे हैं, क्या तुम सब हो तैयार?

0: अगली बार हम सीखेंगे कि क्या करना है अगर आ जाए बुखार।
1: तब तक रहो तारा की तरह तैयार।
0: बाय बाय।
1: हेलो मेरी बेस्ट फ्रेंड टिंकू।
2: हेलो मेरी प्यारी दोस्त तारा।
1: अरे क्या हुआ टिंकू, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो?
2: ओ मुझे बुखार हो गया है।
1: अब्बा टिंकू को बुखार हो गया है? तो डॉक्टर ने क्या कहा टिंकू, क्यों हुआ बुखार?
2: पता नहीं, मैंने तो डॉक्टर को दिखाया ही नहीं है।
1: ओ नो नो नो नो नो टिंकू, बुखार में तेरी पड़ेगी भारी। और तुम तो ऐसी जगह रहते हो जहाँ मच्छर भी बहुत है, हो सकता है मच्छर के काटने से तुम्हें बुखार हुआ हो।
2: ओ हाँ, और कुछ दिन पहले मुझे मच्छरों ने काटा था।

0: अब मैं क्या करूं तारा?
1: क्या हुआ तारा?
2: हाँ जल्दी आओ अप्पा। टिंकू तुम घबराओ नहीं, सबसे पहले पापा मम्मी से कहो कि तुम्हें जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाए।
1: और हाँ, किसी झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं बेटा, अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाना और बिना डॉक्टर से पूछे कोई भी दवाई मत लेना। ओके? कोई भी बुखार दिमागी बुखार हो सकता है, जिससे अपंगता या मृत्यु भी हो सकती है।
0: ठीक है, मैं डॉक्टर को दिखाता हूँ। ओके अंकल, बाय बाय।
2: बाय टिंकू।
1: बाय बाय बेटा, टेक केयर।
2: तुम सब भी समझ गए ना?

0: जरूर जाना, जरूर जाना।
1: अगर नहीं समझे तो मैं आऊंगी करने बार, जैसे आई थी पिछली बार।
2: बिल्कुल नहीं, तारा है हमेशा तैयार और ये मेरा आखिरी वार।
1: तुम जीती मैं हारी, तारा तुम हमेशा रखती हो पूरी तैयारी।
2: दोस्तों अब मच्छरों को हराने की बारी तुम्हारी, तो क्या टीम तारा है मच्छरों से लड़ने को पूरी तरह तैयार?
3: टीम तारा है तैयार।

0: डरना नहीं, मच्छरों से बचने के उपाय।
1: फिलहाल तारा अप्पा की ओर से बाय बाय।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा है और हर कोई ये चाहता है कि तनाव से मुक्त आप रहें, हम रहें। यही एक वजह की बात हेल्थ की आज हम बात करना चाहते हैं कि तनाव को कैसे दूर भगा सकते हैं। मैं समझता हूं अगर आप एक अच्छी सी मुस्कान अपने ऊपर रखकर चलते हैं, धारण करकर चलते हैं, तो निश्चित तौर पर आप तनाव से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुस्कान कितनी जरूरी है आपकी जिंदगी में। या यूं कहें कि आज का जो विषय है वो विषय है स्माइल प्लीज। बात करते हैं, मुस्कुराहट एक ऐसी दवा है जो इंसान को न केवल मुफ्त में मिलती है बल्कि ये उसके ज्यादातर शारीरिक और मानसिक रोगों के निदान में बहुत कारगर साबित होती है। मुस्कुराते रहने वाले मनुष्य की सेहत दुरुस्त रहती है और उसका मिजाज भी हमेशा बढ़िया रहता है। आइए जानते हैं मुस्कुराने के 10 हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। प्रतिदिन सुबह मुस्कुराहट के साथ उठना, नई ऊर्जा से भरकर अपने दिन का स्वागत करना प्रसन्नता से जीवन जीने का सर्वोत्तम धन है। नंबर 2, मुस्कुराने से हमारा मन अपने आप ही चिंताओं से मुक्त हो जाता है और मन को एक आत्मिक सुकून मिलता है। नंबर 3, हंसी के ठहाकों के साथ तालियां बजाने से जीवन में उत्साह का संचार होता है तथा जब हम तालियों के साथ हंसी का व्यायाम करते हैं तो शरीर की सुप्त अवस्था में रहने वाली कोशिकाएं भी जागृत हो जाती हैं, जिससे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 4, मुस्कुराना कई रोगों की अचूक औषधि है। ये एक ऐसी दवा है जिसका हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 5, मुस्कुराते रहने से मनुष्य का इम्यूनिटी सिस्टम सक्रिय होता है। इससे प्रकृति किलर सेल्स में बढ़ोतरी होती है जो वायरस जनित रोगों और ट्यूमर सेल को खत्म करने का कार्य करती है। मुस्कुराहट या दिल खोलकर हंसना हृदय के लिए एक सर्वोत्तम व्यायाम है जिसे टी सेल की संख्या में बढ़ोतरी होती है। नंबर 7, मुस्कुराने से एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए की मात्रा बढ़ती है जो श्वसन नली में होने वाले इन्फेक्शन से बचाव करती है। मुस्कुराने से तनाव को जन्म देने वाले हार्मोन्स का स्तर घटता है। पाचन तंत्र सही रखना, वजन घटाना और चर्बी कम करने में भी हंसी अहम भूमिका निभाती है। जोर से हंसने या मुस्कुराने से हमारे शरीर में एक तरंग सी दौड़ जाती है जिसमें एंड्रोफिन हार्मोन भी होता है जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर का दर्द निवारक है। ये शरीर में स्फूर्ति बढ़ाने और स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। नंबर 9, मुस्कुराने से मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों भागों की सक्रियता बढ़ती है जिससे आपकी मेमोरी शार्प होती है। मुस्कुराना एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो मनुष्य की मनोस्थिति को बदलकर उसे खुश रहते हुए जीने का अंदाज सिखाती है। हमेशा मुस्कुराना एक सकारात्मक भावना है जिसमें व्यक्ति को ऊर्जावान और शांतिपूर्ण बनाने के सभी तत्व उपस्थित रहते हैं। जैसे उदास एवं मुरझाया हुआ चेहरा किसी को भी नहीं भाता है, तो वहीं एक मासूम बच्चे की खिलखिलाती सी मुस्कुराहट हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है क्योंकि मुस्कुराना एक ऐसा एहसास है जो मन को सुकून प्रदान करता है। अतः हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मुस्कुराने के लिए कोई दिन कोई समय तय करने की जरूरत नहीं है। बस हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान कायम रखिए और सेहतमंद बनने के साथ साथ दूसरों को भी सेहतमंद बने रहने में काफी मदद कीजिए। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: आइए हम सब मिलकर जल बचाते हैं। आप जब भी ब्रश करें एवं दाढ़ी बनाएं, सिंक में बर्तन धोएं, तो जरूरत न होने पर नल हमेशा बंद रखें। ऐसा करने से हम 6 लीटर हर एक मिनट में पानी बचा सकते हैं। नहाते समय भी बाल्टी से पानी को व्यर्थ न बहाएं। जहां कहीं भी नल लीक करे उसे तुरंत ठीक करवाएं, नहीं तो उसके नीचे बाल्टी या कटोरा रखें और फिर उस पानी का प्रयोग करें, क्योंकि जल है तो कल है। सुनो शारदा 90.8 FM और यूनिसेफ की तरफ से जनहित में जारी।

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
5: अकड़ी पकड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्का दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी।

0: ऑडियो ओवर गो।
1: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा at 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
0: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: Solo Sharda.
5: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
6: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
5: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
7: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
6: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप।

0: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: Papa कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Film making एक creative field है, और यदि आप creative सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
6: The world is here.

0: 10 से 19 साल के बच्चे हर हफ्ते लें आयरन की सिर्फ एक नीली गोली। ये खून में आयरन की मात्रा बढ़ाए, दिमाग और शरीर एकदम सॉलिड बनाए। सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध। एनीमिया मुक्त भारत।
1: सही पोषण, देश रोशन, नहीं रहे कहीं कुपोषण।
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
0: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: बीवी न छोड़े जान।
1: अगर आपने डॉट्स का कोर्स बीच में छोड़ दिया है तो शीघ्र जांच कराएं। कहीं आपको बिगड़ी हुई टीवी यानी MDR टीवी ना हो चुकी हो। इसका इलाज 24 से 27 महीने तक चलता है। ऐसी स्थिति में इलाज पूरा कराएं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
2: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाएं। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: क्या आपको पता है गर्भवती महिला को प्रसव के लिए समय से अस्पताल ले जाने के लिए सरकारी एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है
2: और वो भी बिल्कुल निशुल्क। गर्भवती को प्रसव के लिए अस्पताल ले जाने के लिए 102 नंबर पर फोन करके आप एम्बुलेंस सेवा प्राप्त कर सकते हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आशा या नर्स दीदी को संपर्क करें।
2: शिशु की सही देखभाल से
1: फर्क पड़ता है। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: आप ही के लिए है, तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: जब टीचर हमारी क्लास में अटेंडेंस लेते हैं और अगर कोई बच्चा मिसिंग होता है तो जब हम उसके बारे में पता करते हैं और अगर हमें पता चलता है कि उस बच्चे को बुखार है तो फिर हम तुरंत आशा से संपर्क करते हैं जो उसी गांव की होती हैं। वो आती हैं और हम उन्हें उन बच्चों के बारे में बताते हैं कि आप जाकर देखिए। फिर वो उनके घर जाती हैं, उनकी कंडीशन देखती हैं और फिर जैसा होता है वैसा वो उनको रेफर करती हैं।
1: चाहे कुछ भी हो मजबूरी,
2: चाहे कुछ भी हो मजबूरी,
1: मच्छरों से खुद को बचाना है,
2: मच्छरों से खुद को बचाना है।
1: दिमागी बुखार पर सीधा वार,
2: दिमागी बुखार पर सीधा वार,
1: सुरक्षित होगा हर परिवार,
2: सुरक्षित होगा हर परिवार।
0: बच्चों को निबंध के माध्यम से, भाषण शैली के माध्यम से जागरूक करते हैं और बच्चों को पोस्टर प्रतियोगिता के माध्यम से भी जागरूक करते हैं और बच्चे उसे अपने घर जाकर के अपने अभिभावकों को बताते हैं।
3: मेरी बेटी स्कूल से जो सब सीख के आती है वो सब हम घर पे पालन करते हैं, जैसे कि हाथ धोना, गड्ढे में पानी इकट्ठा न रहने देना, मच्छरदानी लगाकर सोते हैं क्योंकि हमें मच्छर काट लेगा तो बुखार हो जाएगा। और बच्चे जो स्कूल से सीख के आते हैं वो इसे सब बच्चे अपने घर पे अच्छे से पालन करें।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हवा में फैलने वाला रोग है जो बिना मुंह ढके खांसने से और इधर उधर बलगम थूकने से फैलता है। आप बलगम को कागज के टुकड़े में थूक कर जला सकते हैं या एक राख भरे मटके में थूक कर जमीन में दबा भी सकते हैं। इससे रोगाणु फैलने का कोई डर नहीं होता। अपनी खिड़कियाँ खुली रखें जिससे खूब सारी रोशनी और शुद्ध हवा अंदर आए। ऐसे वातावरण में टीबी रोगाणु ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते। और हाँ, अपने इलाज का कोर्स समाप्त जरूर कीजिए। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें। टीबी हारेगा, देश
3: जीतेगा। पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
4: बिल्कुल सोचा है पापा।
3: क्या सोचा है?
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
3: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
4: जी पापा।
3: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
4: हाँ पापा बिल्कुल।
5: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
6: So where are you? The world is here at Sharda University.
7: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।
8: शारदा शुरुआती दो साल है बच्चे के जीवन में खास, इसी दौरान होता है दिमाग का अधिकतम विकास। देखे सुने जाने समझे और बढ़ाए हाथ, बचपन में मिली सीख रहे जीवन भर उसके साथ। माँ की सेहत से जुड़े हैं बच्चे के तार, अच्छी शुरुआत का यही है आधार। गर्भावस्था में पौष्टिक आहार अपनाएं, आयरन युक्त भोजन थाली में लाएं। जन्म के बाद 6 माह तक केवल स्तनपान, इसके बाद पूरक आहार का भी रखें ध्यान।
9: जब शरीर रहेगा स्वस्थ तो सुंदर होगा जीवन, क्योंकि सही पोषण तो देश रोशन। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।